कुमार की फिल्मों की बात होती है तो डेफिनेटली वैजयंती माला इज देयर समवेयर। 1957 की फिल्म नया दौर, मिन्नू मुमताज और कुमकुम, साथ में दिलीप कुमार और वैजयंती माला। ओपी नैयर के संगीत पर भी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। दिलीप कुमार की फिल्मों से निकाली हुई चुने हुए संगीत को जारी रखते हुए एक बार फिर 1957 की फिल्म नया दौर।

संगीत की जानकार के अंतर्गत अभी आप सुन रहे हैं चुने हुए संगीत दिलीप कुमार की फिल्मों से निकाली हुई हिट्स ऑफ 40s, 50s और 60s हर रविवार के सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक आपके साथ फिरोज खान। आपको याद रहे संगीत की जानकार को हम स्टेशन पर पेश करते हैं हर रविवार के सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक। शामिल होकर आपके लिए हम पेश करते हैं 40s, 50s और 60s से निकाली हुई चुने हुए संगीत। ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है, ऐसे गीत जिसमें धुन हो, उन दिनों धुन संगीत की जान माना जाता था। यह है संगीत की जानकार, आपका साथ फिरोज खान। तो चलो एक बार फिर फिल्म नया दौर।

दिलीप कुमार की फिल्मों से निकाली हुई चुने हुए संगीत में भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को। फिल्म तो दिलीप कुमार, लेकिन पर्दे पर इस बात थे जोनी होकर। लेकिन इस बार डेफिनेटली पर्दे पर दिलीप कुमार और साथ में विजयदीमाला। ये है संगीत की जानकार, आपका साथ फिरोज खान।

संगीत के जंकर के पहले भाग में भी आप सुन रहे थे 40s, 50s और 60s से निकाली हुई चुने हुए संगीत। आप सुन रहे हैं दिलीप कुमार के फिल्मों से निकाली हुई चुने हुए संगीत, और दिलीप कुमार की फिल्मों से निकाली हुई चुने हुए संगीत की आखिरी नगमा, आखिरी गीत आपके लिए। नॉट एग्जैक्टली द सेम रिदम और द सेम मेलोडी, बट स्टिल वन ऑफ माई फेवरेट्स। अगेन द फिल्म वॉज

0: यादों के सफर का शुरुआत हमने किया, संगीत की जानकार की शुरुआत हमने किया, दिलीप कुमार की फिल्मों से निकाली हुई कुछ चुने हुए संगीत। हमारे स्टूडियो में करीबन 25 मिनट हो चुके हैं 10 बजकर। आपको याद दिला दें एक बार फिर कि ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट वर्ल्ड कप गेम विल बी ऑन SBS टुनाइट। दे प्ले नॉट टुनाइट, दिस आफ्टरनून एट 1 PM। सो डोंट फॉरगेट, ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट वर्ल्ड कप गेम अगेंस्ट टर्की दिस आफ्टरनून एट 1 PM ऑन SBS। ये है संगीत की जानकार और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान। और आज सुबह हमने शुरुआत किया दिलीप कुमार की फिल्मों से निकाली हुई चुने हुए संगीत। द नेक्स्ट सॉन्ग इज नथिंग टू डू विद दिलीप कुमार। जी हाँ, गाने का बोल सुनो सुनो मिस चटर्जी। ओपिनियर के संगीत पर 1966 के फिल्म बहारें फिर भी आएंगी, पर्दे पर जोनी वॉकर। और गाने से पहले जोनी वॉकर के डायलॉग भी मैं पेश करना चाहता हूं, एक खास फरमाइश पर, और वन ऑफ माय फेवरेट्स, ये भी अपना अलग जगह रखता है।
1: दूसरा गाल हाजिर है, चुप हो। अगर कुछ गुस्सा बाकी रह गया हो तो इस गाल पे भी एक त्रिशूल और। मान भी जाओ रूबी।
2: खबरदार जो मेरा नाम लिया तो।
1: अच्छा, खानदानी नाम सही, मिस चटर्जी।
0: 1966 की फिल्म बहारें फिर भी आएंगे, संगीतकार ओपिनियर मोहम्मद रफी, आशा भोसले और अंजान, पर्दे पर जोनी वॉकर।

0: बात नहीं।
1: दिलों को झंकृत करें,
2: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरे।
1: यह है संगीत की जानकार और आपके साथ फिरोज खान। रेडियो ब्रिजवाणी 1701 ब्रिजबन। लता मंगेशकर और मुकेश, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जय किशन, फिल्म उजाला, शम्मी कपूर और माला सिन्हा की फिल्म, आपको याद होगा। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में भी हो चाहे मुलाकात तो

गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जय किशन, फिल्म उजाला, शम्मी कपूर और माला सिन्हा की फिल्म। संगीत की जानकार पर आप सुन रहे हैं ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है, और इसमें शामिल कर रहे हैं इस बार हम खास तौर पर माला सिन्हा की फिल्मों से निकाली हुई चुने हुए संगीत, और इस बार फिल्म वही फिल्म उजाला, लेकिन शम्मी कपूर के लिए इस बार मन्ना डे। यस अगेन वन ऑफ दोज ओकेजन व्हेन रफी डिड नॉट सिंग फॉर शम्मी।

0: शमी कपूर के साथ माला सिन्हा फिल्म उजाला।
1: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा। इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं। सुनते रहिए संगीत

उषा खन्ना के संगीत पर भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को फिल्म तुमसा नहीं देखा, शम्मी कपूर की फिल्म तुमसा नहीं देखा। आपको याद रहे संगीत सुर और ताल का एक संगम है। उन दिनों संगीत में धुन था, धुन संगीत की जान माना जाता था। हर रविवार को 10 से लेकर 12 बजे तक संगीत की झनकार 40s, 50s और 60s से निकाली हुई When Melody Was Supreme।

0: बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश धुन में आधारित शुगर इन द मॉर्निंग, शुगर इन द इवनिंग, शुगर इन द सफर टाइम फिल्म दिल देख दुख से निकाली हुई मोहम्मद रफी उषा खन्ना के संगीत पर शम्मी कपूर और आशा फारक की फिल्म।
1: रेडियो ब्रिजवाणी 1701 ब्रिस्बेन।
2: रेडियो वो हो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो।
1: संगीत की झनकार पर ये है यादें
0: जिसको जारी रखते हुए
1: आपको याद होगा साल 1951 करण दीवान के साथ विजयंती माला पर्दे पर एस डी बर्मन के संगीत पर आवाज शमशाद बेगम।

1951 की फिल्म बहार से निकली हुई भी आप सुन रहे थे शमशाद बेगम को एस डी वर्मन के संगीत पर विजयंती माला और करण दीवान की फिल्म बहार। संगीत ताल और मेलोडी का एक संगम है। आज के संगीत पर पिकेशन और रिदम का राज है। रैप म्यूजिक और अय्यार रहमान का म्यूजिक सब पर रिदम और ताल का ही राज है, लेकिन पहले धुन यानी कि मेलोडी संगीत का जान माना जाता था। और अब हम आपको ले चलेंगे उस दौर पर जब मेलोडी संगीत का जान माना जाता था, यानी कि व्हेन मेलोडी वाज सुप्रीम। एक बार फिर साल 1951, गीता बली और देवानंद की फिल्म बाजी, आवाज गीता दत्त, संगीतकार एस डी बर्मन, डायरेक्टेड बाय गुरु दत्त, फिल्म बाजी।

51 की फिल्म बाजी से निकली हुई भी आप सुन रहे थे गीता रॉय को एस डी वर्मन के संगीत पर। और अब साल 1957 पर्दे पर किशोर कुमार साथ में विजयंती माला, फिल्म का नाम आशा, सी रामचंद्र के संगीत पर आवाज किशोर कुमार और गीतकार राजेंद्र कृष्ण। यह है संगीत की जानकार आपको साथ फिरोज खान। साथ दीजिए 12 बजे तक बहुत खूब हर रविवार को 79.1 ब्रिस्बेन पर।

0: गाय का जो पौधा दिल की ये क्यारी बनेगी फुलवारी, ये दुनिया जलेगी जलन की हमारी, हंसेगी हंसेगी हंसेगी मेरी प्यारी इनामी नडी का,
1: इनामी नडी का,
0: ए डाई डमनी का,
1: ए डाई डमनी का,
0: ए मका नका नका।

0: मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा, मगर ये कहूंगा
1: क्या
0: यही है यही है यही तो है वो।

0: 1957 की फिल्म आशा से निकाली हुई, पर्दे पर किशोर कुमार, आवाज किशोर कुमार, संगीतकार सी रामचंद्र और गीतकार राजेंद्र कृष्ण।
1: रेडियो वो हो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो।
0: '58 की फिल्म हॉरर पिक्चर निकाली हुई मधुबाला, पर्दे पर और उनके बड़कू अशोक कुमार।

I had to include this long tail out. Yeah, my YouTube se transferata. I couldn't stop it because the dancing sequence is great, right to the end of the song. ये है संगीत के जानकार और आप सुन रहे हैं मिली जुली संगीत 1950s और 60s और 70s से निकली हुई. इस बार 1954 की फिल्म आर पार, जोनी ओकर और गुरुदत्त की फिल्म आर पार से निकली हुई. अब ओपी नीर संगीतकार और पर्दे पर जोनी ओकर गुरुदत्त और आवाज गीता दत्त के साथ मोहम्मद रफी.

0: प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम।
1: जा जा जा जा बेवफा,
0: सुन सुन सुन सुन जालिमा,
1: अरे जा जा जा जा,
0: अरे सुन सुन सुन सुन,
1: जा जा जा जा,
0: सुन सुन सुन सुन।
2: 1954 की फिल्म आर पार से निकाली हुई जॉनी वॉकर और गुरुदत्त की फिल्म आर पार, गीतकार ओपी नैयर, आवाज गीता दत्त और मोहम्मद रफी, और अब शमी कपूर के साथ आशा पारक, फिल्म दिल देखो, उषा खन्ना के संगीत पर मोहम्मद रफी और

0: ये है संगीत की जिनकार आपके साथ फिरोज खान और आप सुन रहे हैं गीत माला। आपने हमारा साथ देते हैं तो आपका स्वागत करते हैं माला से, गीत माला से। ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है, ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और ऐसे गीत जिसमें मेलोडी हो, यानी उन दिनों धुन संगीत की जान माना जाता था। अभी आपने सुना आशा भोसले को मनोज कुमार और शर्मिला टैगोर की फिल्म, और अब चलो 1957 तुमसा नहीं देखा अमिता और शम्मी कपूर की फिल्म, संगीतकार ओपी नैयर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।
1: देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

जलोगे आत्मलोगे रूठ के हमसे हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे आत्मलोगे रूठ के हम

0: लोगे हाथ मलोगे रूठ के हंसे हाँ।
1: और यादों के सफर के आखिरी गीत के बाद हम छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे और जब वापस आएंगे तो हम पेश करेंगे The other golden years of Bollywood, hits of 90s. Filhal, yaadon ke safar ka aakhri geet aapke liye. Based on a famous English tune, Diana. Film, Dil Dekh Dekho se nikali hui, yeh hai Mohammad Rafi.

0: जहां संगीत की जानकार की आखिरी नगमा आपके लिए हम पेश कर रहे हैं साल 1959 उषा खन्ना के संगीत पर मोहम्मद रफी और आशा भोसले और आपको याद होगा पर्दे पर आशा पारक और शम्मी कपूर।
1: आया महफिल में बिजली सी चमकी दिल में।

0: रेडियो संगीत की जानकार मनोरंजन संस्कृति और समाचार।
1: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: 24 घंटा आपका साथ देता है रेडियो ब्रिजवानी, द इंडियन रिदम फ्रॉम डाउन अंडर।
4: कभी तो रुलाए, कभी कभी चैन दे तो सताए, कभी हमें कर दे बेखबर।
3: रेडियो ब्रिजवानी।

0: दिन रात सुबह शाम चलिए 1701 के साथ
1: हमारे संगे तू ना चल बोगे ना
2: हमारे संगे चलियो कि नहीं आज चलो भी से लेकर 8 बजे तक ले भारा आपके साथ फिरोज खान 10th of September 2017
3: मौसम है खुशनुमा साथ हो रही है सहेली नूरजहां आदाब नमस्कार
2: फिरोज खान भी हाजरे खिदमत हूँ आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते आदाब अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल
3: आज कुछ ऐसा मूड बना है कि सबसे पहले पंजाबी की तारीफ हो जाए वो भी डंके की चोट पर
2: लेकिन टाइटल तो कहता है चोरी चोरी चुपके चुपके
3: डायरेक्टर्स अब्बास मस्तान की कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट चोरी चोरी चुपके का मचलता हुआ फड़कता हुआ सहलान
2: हिट्स ऑफ 90s संगीत की झनकार पर ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुकी हो

0: हाँ जी, प्रोग्राम का शुरुआत पंजाबी की तारीफ से सोनू निगम और जसविंदर नूरवाला की आवाजों में संगीत की झनकार पर।
1: फिलहाल हिप्स ऑफ 90s में अब शामिल कर रहे हैं एक रिश्ते को, तो पंजाबी की तारीफ सुन चुके, अब एक रिश्ता में मोहब्बत मोहब्बत को पुकार रही है। मेलोडियस कॉम्बो नदीम श्रवण के मीठे मधुर संगीत पर कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें।

0: फिल्म फेयर अवार्ड और क्रिटिक्स अवार्ड की विजेता करिश्मा कपूर और उनके साथ अक्षय कुमार के लिए फिल्म एक रिश्ता में अलका याग्निक और साथ में उदित नारायण की आवाजें।
1: हिट्स ऑफ 90s ऐसे गीत जो हिट पैरेड में अपनी छाप छोड़ चुकी हो।
0: डेफिनेटली ये वो गीत है जो रेडियो नवतरंग में इतना लोकप्रिय हुआ और साथ में FM 96 और उसके सिस्टर स्टेशन BPFM में भी बजता है।
1: जी हाँ, जस्ट स्माइल अ लिटल, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, शाम की आवाज फिल्म।

0: फिल्म करियर की शुरुआत इसी गीत से हुई, फिल्म प्यार में कभी कभी।
1: रेडियो संगीत की जानकार, मनोरंजन, संस्कृति और समाचार। यह है संगीत की जानकार और आप सुन रहे हैं रीसेंट पास्ट हिट्स।
2: आगे चल के यादों का सफर, लेकिन हिट्स ऑफ 90s और रीसेंट पास्ट हिट्स के अंतर्गत इस बार नूर।
0: और इस बार आ रहे हैं डेडली दत्त, संजय दत्त, और इनके सपने में एक गुड़िया आती है।

0: फिल्म अभागी का गीत साजिद वाजिद के संगीत पर, संगीत की झनकार पर हिट्स ऑफ 90s।
1: घोड़ी चढ़ के बांध के सहरा उसके घर में जाऊंगा, सच कहता हूँ
0: बागी, बागी,
1: कसम
0: बागी,
1: मैं जो रूप उसे बनाऊंगा।

0: फिलहाल हिट्स ऑफ 90s का सिलसिला जारी रखते हुए इस बार अमित कुमार की आवाज, वो भी सिलसिला है प्यार का में। लड़कियों से कुछ कहना चाहते हैं अमित कुमार।
1: संगीत की झिंकार पर हिट्स ऑफ 90s।

मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की झनकार।

0: 90s में भी आप सुन रहे थे किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार को फिल्म सिलसिला है प्यार का। संगीत की जानकार पर हिट्स ऑफ 90s ऐसे गीत जो हिट प्रेड में अपनी छाप छोड़ चुकी हो।
1: होंचो अर्जुन रामपाल और मिस एशिया पैसिफिक दिया मिर्जा, इनका दीवानापन यानी फिल्म दीवानापन का ये सोलो नंबर शान की आवाज में।

0: हिट्स ऑफ 90s में अभी आप सुन रहे थे आजकल के भरते गायक शान की आवाज में फिल्म दीवानापन का एक गीत।
1: रेडियो वो जिसमें संगीत की झनकार हो, रेडियो वो हो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो।
0: और अब हिट्स ऑफ 90s में एक बेहद हसीन घर की बातें, आवाज जगजीत सिंह और चित्रा।

0: ब्रिस्बन की पहली पसंद 79.1 ब्रिस्बानी AM।
1: फिलहाल रीसेंट पास्ट हिट को जारी रखते हुए एक खास पास्ट हिट आपके खिदमत पेश कर रहे हैं।
2: जेपी दत्ता की मैग्नम ओपस रिफ्यूजी, जिसका संगीत तैयार करने के लिए अनु मलिक का वो सपना साकार हुआ जिसे हर कलाकार संजोता है, सहेजता है, जिसे हकीकत में बदलने की कोशिश में रात दिन एक कर देता है। वो ख्वाब है नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय सम्मान। फिल्म रेफ्यूजी के सुफियाना किस्म के निखालिस भारतीय मूल का संगीत देने के लिए अनु मलिक को यह 2000 का नेशनल अवार्ड हासिल हुआ। जावेद अख्तर के खूबसूरत अल्फाज और अलका तथा सोनू निगम की सदी हुई मधुर आवाजें।

0: कुछ गीत ऐसे होते हैं जो पहली बार सुनते ही दिल में समा जाते हैं। ये गीत उन गीतों में से एक है।
1: फिल्म रिफ्यूजी का वही दिवत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में सुनहरे पर्दे की नई जोड़ी करीना कपूर और साथ में अभिषेक बच्चन के लिए।
0: यह है 1701 संगीत की झनकार और संगीत की झनकार पर आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 90s और रिसेंट पास हिट। ऐसे गीत जो हिट ब्रेक में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, ऐसे ही गीत से हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। रिसेंट पास हिट्स और हिट्स ऑफ 90s, ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है। और हिट्स ऑफ 90s के अंतर्गत इस बार थोड़ी देर के लिए आपके लिए पेश करते हैं शाहरुख खान स्पेशल।
1: 2 तारीख नवंबर, दो फिल्मी सितारों का जन्मदिन, शाहरुख खान और अनु मलिक। 1993 की वो फिल्म जिसके साथ किंग खान और काली काली आंखों वाली काजोल की जोड़ी बेहद पसंद की गई तथा अनु मलिक का संगीत अवार्ड विनिंग साबित हुआ, यानी फिल्म के साथ जुड़ा हर कलाकार एक बाजीगर ठहरा।
0: शाहरुख खान का वो डायलॉग तो आपको याद है ना, हार कर जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। मस्तान अब्बास के डायरेक्शन में बनी फिल्म बाजीगर का टाइटल ट्रैक कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में अनु मलिक के संगीत पर

0: अनु मलिक के संगीत पर अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें। इसी फिल्म में बाजीगर का वो गीत काली काली आंखों, गाने के लिए कुमार सानू को फिल्म फेयर अवार्ड मिला और अनु मलिक को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड। अनु मलिक बताते हैं कि उस समय उनकी बड़ी बेटी अनमोल सिर्फ 2 साल की थी, तो अनमोल ने फौरन इस गीत को पकड़ लिया था, यानी ये काली काली आंखें वो भी गाने लगी थी और मैं समझ गया था कि ये गाना खूब चलेगा।
1: और अनु मलिक की पत्नी अंजू भी काफी अच्छा म्यूजिक सेंस रखती है। अनु और अंजू की 2 बेटियां हैं, अनमोल और सना।

शाहरुख खान की प्रतिभा को पहचानने वाली जौहरी की पैनी नजर कोई और नहीं ड्रीम गर्ल हेमा मलिनी की थी, जिन्होंने सबसे पहले अपनी टेलीसीरियल फौजी में शाहरुख खान को ब्रेक दिया। फिर फिल्म दीवाना और बाजीगर चमत्कार काफी लोकप्रिय साबित हुई और फिर दिलवाला दुल्हनिया ले जाने आया तो कामयाबी की बुलंदी आसमां छूने लगी। जितना सिमरन और राज एक दूसरे के दीवाने हुए, उतना ही सिनेमा प्रेमी इस जोड़ी के दीवाने हुए।

आदित्य चोपड़ा की मेडन वेंचर 1995 की सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का बेहद रोमांटिक और लोकप्रिय युगल गीत उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजों में जतिन ललित के संगीत पर पर्दे पर काजोल और शाहरुख खान के लिए। फिल्म ने कुल मिलाकर 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। इससे पहले 1959 में फिल्म मधुमती ने 9 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। शाहरुख कहते हैं कि जब भी वो अपनी पत्नी गौरी को देखते हैं तो यही गीत गुनगुनाते हैं। बहरहाल कामयाबी का सफर आगे बढ़ता रहा। हर तरह का रोल करके अपनी वर्सिटिलिटी का प्रमाण देते रहे शाहरुख। फिल्म डर में किरण के लिए उनका जुनून और हकलाते हुए किरण का नाम लेना एक खास अदा बन गई और तू है मेरी किरण की सदा गूंजने लगी।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।

Good afternoon and welcome back to Radio Prizvani. नमस्कार किमचो सत्यकाल अस्सलाम वालेकुम और बुला कहते हुए एक बार फिर रोहित सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहेगा रेडियो ब्रिजवानी पर। ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा रेडियो ब्रिजवानी पर शाम का सफर में। जुड़े रहेगा हमारे साथ दो घंटे के लिए खूबसूरत से कार्यक्रम खूबसूरत से गीत हम अपने कार्यक्रम में लेकर उपस्थित हुए हैं। मिले जुले संगीत का कार्यक्रम रेडियो ब्रिजवानी पर रोहित सिंह के साथ शाम का सफर में। देश विदेश में आप हैं, स्टेट में आप हैं, ब्रिस्बेन में आप हैं, हमारी आवाज आप तक पहुंच रहा है रेडियो के माध्यम से या इंटरनेट थ्रू पहुंच रहा है। आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो ब्रिजवानी पर। याद कीजिएगा ढाई बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा रेडियो ब्रिजवानी पर। रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान लाइव कार्यक्रम अपने स्टूडियो से आपके लिए पेश कर रहे हैं। डायरेक्ट स्टूडियो लाइन 3219-1701 रेडियो ब्रिजवानी पर रोहित सिंह के साथ ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक।

रविवार की शाम ठीक 12:30 बज चुका है और अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ है रेडियो विजवानी पर शाम के सफर में। शायद आप घर पर भोजन कर रहे हैं, गाड़ी में सफर कर रहे हैं, यह विश्राम कर रहे, जो भी आप कर रहे हैं साथ में हो जाएगा, क्योंकि अभी से लेकर 2:30 घंटे 2 बजे तक, यानी 2:30 बजे 2 घंटे का कार्यक्रम 2:30 बजे तक हम आपके लिए रेडियो बिजवानी से

और यात्रियों के साथ ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं। अगर आपने अपना रेडियो भी खोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे शाम के सफर में। ठीक है, इसी लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ है। रेडियो बिजवानी पर 2 घंटे के लिए जुड़े रहेगा हमारे साथ। हमेशा की तरह स्थानीय कलाकार से हम आज का कार्यक्रम आरम्भ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it bin coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

और यात्री का रोहित के साथ कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिस्बेन पर सुन रहे हैं। साथ दीजिए ठीक 2:30 बजे तक स्टूडियो के घड़ी के अनुसार ठीक 1 बज चुका है, 2:30 बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रूना लैला की आवाज में एक गीत सुनते हैं।

बाबेलर की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के लिए रेडियो मिजवानी पर साथ दीजिएगा ठीक 2:30 बजे तक शाम का सफर में फरमाइश करने वाले शिवांश मोदी रवि प्रताप आप दोनों के लिए

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत worried हूँ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
15: बाबी लहरी की आवाज में आप सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत गीत, और हमारे जितने भी नोट साइट के श्रोता है, आप भी अपना नाम इस गीत में शामिल कर सकते हैं। घर बैठे अगर आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप भी अपना नाम इस गीत में शामिल कीजिएगा। के साथ आप सभी सुन रहे रेडियो ब्रिजवानी शाम का सफर नवा कार्यक्रम। ठीक अभी से लेकर टाइम जी तक आपका हमारा साथ है। बाबी लहरी की आवाज में खूबसूरत गीत आप सभी के लिए।

पॉपुलैरिटी के संगीत पर पॉपुलैरिटी की आवाज में खूबसूरत संगीत रोई सिंह के साथ रेडियो मिजबानी पर चलते इस गीत में एक बार फिर याद करते हैं श्रीमान श्रीमती रवि प्रताप को आप दोनों के लिए।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: कौन होगा? ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फिजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन। ओपन्स
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
6: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
5: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
6: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
5: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
6: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
7: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
8: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
9: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
10: शाम का सफर रूही सिंह के साथ।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.

पप्पी लैरी और लता मंगेशकर की आवाज में ही बहुत ही खूबसूरत गीत पर्दे पर रंजीता और मिथुन चक्रवर्ती के लिए याद की जगह इसी के साथ ही कार्यक्रम आप सभी सुन रहे रेडियो ब्रिजवानी पर ठीक 2:30 बजे ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और 2:30 बजे से 5 बजे तक आप सुख के साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे।

और कार्यक्रम में सबसे आखिरी गीत आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। रेडियो बिजवानी पर मैं हूँ रोहित सिंह, ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक साथ दूंगा।

और दोस्त साथी इसी गीत के साथ साथ हम अपने कार्यक्रम के समाप्ति पर पहुंच गए। उम्मीद करता हूं कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। रेडियो मनपत के लिए कीजिएगा थोड़ी देर में आप सबके साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे। साथ देने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हमारी और आपकी मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैव द बेस्ट ऑफ द वीकेंड एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वीक अहेड। सुखी साथ कार्यक्रम थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्ते, शब खैर और विनाकार।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701. ये आपकी साथी रोहित सिंह ने. अब चलते हैं अगला सफर पर. हमारा आपका साथ है एक बार फिर अभी से लेकर ठीक 5 बजे तक आपके साथ सु. आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल.

भी आज पहली बार हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, स्वागत है आप सभी का रेडियो ब्रिस्बेन एएम से। आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियो 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से। कल को खो दिया आज के लिए, आज को खल दिया कल के लिए। कभी जी ना सके हम आज के लिए, तो बीत रही है जिंदगी पल आज और कल के लिए।

जिंदगी क्या है दोस्तों? जिंदगी सिर्फ एक किताब है। हर दिन हर नया पन्ना होता है जिंदगी में। जो बीत गया वो सिर्फ अनुभव है, जो मिल रहा है वो उपहार है, और जो आने वाला है वो उम्मीद है। सब कोशिश करते रहे। हमारे पास बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत प्यारे प्यारे से गीत हम लेकर उपस्थित हुए हैं, ओल्ड हिट से, नई हिट से, रिमिक्स से। हमारे पास आज जन्मदिन की सूचना भी है, इसे आप थोड़ी देर में हमारे साथ सुन सकते हैं। और हाँ, इसी के साथ अगर आज आपकी जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, कुछ भी है, आपको बहुत सारी सी बधाइयां हों।

0: और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे स्टूडियोज में 3:15 बज चुके हैं। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो स्वागत है आप सभी का रेडियो विश्वानी AM पर।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: चलते हैं दोस्तों फरमाइशी प्रोग्राम शुरुआत करते हैं। बहुत सारे से लोग इंतजार करने हैं लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि आज हमारे पास एक बर्थडे अनाउंसमेंट भी है तो इंतजार करते रहेगा, देखिएगा कि आज कौन अपना जन्मदिन मना रहा है। सबसे पहले फरमाइशी हमारे पास फॉरेस्ट लेक से और फॉरेस्ट लेक से फरमाइश है या मिस्टर एंड मिसेस सेतराम की ओर से आप सुनना चाहते हैं मेरी सामने वाली खिड़की।

किशोर कुमार की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग आज की हमारी पहली फरमाइश, जिसे फरमाइश करने वाले थे फॉरेस्ट लेक से मिस्टर एंड मिसेस अशेत राम. आचो फील की ओर बढ़ते हैं दोस्तों. अगली फरमाइश है हमारे पास आचो फील से अनवर और शेरुल की ओर से.

पेश किया हुआ इसका ब्यूटीफुल सॉन्ग और इसे मैंने लिया था फिल्म जिंदगी तूफान से, जिसकी फरमाइश करने वाले थे शहरुल अनवर फ्रॉम आज फेल. आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी. इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में 5 मिनट रह गए हैं 3 बजने में और हमारे पास आज बहुत लंबी लिस्ट है. एक बार फिर फरमाइश के लिए एक बर्थडे अनाउंसमेंट भी है, लेकिन उससे पहले बीच बीच में आप कुछ मजेदार गीत सुनते चलेंगे.

0: ਓਏ ਰਾਹੁਲ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
1: ਓ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu aaj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried.
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूँ?
3: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: हम चलते हैं जिल्मिया की ओर। दोस्तों, जिल्मिया से अगली फरमाइश है हमारे पास विजय और माला की ओर से। विजय और माला, आप दोनों के लिए जो अगला गीत है लता किशोर की आवाज का गीत है, जिसे मैंने लिया है फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से।

बात बरस गई तहजील में ऐसी फरमाइश आई थी हमारे पास माला अब विजय की ओर से। हम चलते हैं फॉरेस्ट लाइक की ओर दोस्तों। अगला गीत की फरमाइश है फॉरेस्ट लाइक से हमारे पास हफीज अली खान और जबीदा खान की ओर से आप दोनों के लिए अगला गीत।

0: मुलाकात जरूरी है सनम, ब्यूटीफुल सॉन्ग, और हमारे साथ इस गीत में शामिल हो गए थे, यानी कि हमारे पास फरमाइश आई थी फॉरेस्ट लेक से हाफिज अली खान और जबीदा खान की ओर से।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Madhvit, one of the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
0: चलते हैं, देखे दोस्तों अगला गीत के लिए किसने फरमाइश किया है। इसी के साथ साथ हमारे घड़ी में 14 मिनट हो गए हैं, 3:00 शाम का सफर रेडियो ब्रिसवानी AM है, और फरमाइश है हमारे पास सैक्रामेंटो USA से ललिता गौतम की ओर से। आपके लिए रफी साहब की आवाज का और आशा भोसले की आवाज का अगला गीत है, फिल्म का नाम है आया सावन झूम के। गीत के बाद हम लेंगे आज के बर्थडे अनाउंसमेंट।

0: जैसे गीत रफी साहब की आवाज में आपने सुना पर्दे पर धर्मेंद्र के लिए, और आज हमारे साथ इस गीत में शामिल हो गई थी ललिता गौतम जो हमें सुन रही है सैक्रामेंटो यूएसए में।
1: Wait, beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: और इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में 20 मिनट होने वाले हैं 3:00। रेडियो विस्पानी आईएम आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान, ये है शाम का सफर। और इस सफर पर एक बार फिर आपके साथ सुबह से लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। और हम कोशिश करेंगे आप सभी की फरमाइश जरूर पूरी करने की, लेकिन आज चलते हैं अगला जो मैंने पहले वादा किया था, अगला जो रिक्वेस्ट है और बर्थडे अनाउंसमेंट है। बर्थडे अनाउंसमेंट आई है हमारे पास ऑल द वे फ्रॉम सिडनी से, और सिडनी में आज अनिता सिंह अपनी जन्मदिन मना रहे हैं। अनिता हैप्पी बर्थडे, और आपको आज याद किया है, बहुत सारे से प्यार आशीर्वाद मिले हैं, आपके हस्बैंड विकास ने आपको बहुत सारे से प्यार भेजे हैं, दो बेटे हैं अनीश और विघ्नेश, दोनों ने अपनी प्यारी माँ को बहुत से प्यार दुलार भेज रहे हैं। साथ में मेलबर्न से भैया सुनील और उनके परिवार ने आपको बहुत प्यार और बधाई भेज रहे हैं। भैया रिचर्ड फ्रॉम सिडनी, बहन बबीता और उनके परिवार की ओर से, और यहाँ केड्रन पार्क से जोनी और सविता भी आपको कहते हैं हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन आपको बहुत बहुत बहुत बधाई हो अनिता। और हंसी अनिता, हम आपको यही कहना चाहते हैं कि हंसी आपकी कोई ना चुरा पाए, कोई कभी जिंदगी में आपको रुला ना पाए, खुशियां का दीप ऐसे जले आपकी जिंदगी में कि कोई तूफान भी उसे बुझा ना पाए। बहुत प्यारी ऐसी अनिता है जो आज अपनी जन्मदिन मना रही है। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहते हैं कि अनिता नसीब और ऊंचे हो तुम्हारे, सबका प्यार यूं ही मिलता रहे, दुआ है रब से इस हर सफलता मिलती रहे आपको, जन्मदिन की बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अनिता। हम ये कहना चाहते हैं कि ए दिन आपके जिंदगी में बार बार बार बार बार बार आए, साल के दिन हो 50,000। रेडियो ब्रिजवानी टीम की ओर से विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी डे, हैप्पी बर्थडे।

वंस अगेन वहाँ सिडनी में बहुत प्यारी सी अनिता सिंह है जो आज अपनी जन्मदिन मना रही है। एक बार फिर अगर आपने मिस कर दिया है तो अनिता आपको जन्मदिन की बहुत सारी सी बधाइयां भेज रहे हैं। आपके हस्बैंड है विकास फ्रॉम सिडनी, साथ साथ में बेटा अनिश, बेटा विघ्नेश और साथ साथ में मेलबर्न से भैया सुनील और उनके परिवार, भैया रिचर्ड एंड फैमिली फ्रॉम सिडनी एंड बबीता, सिस्टर बबीता उनके परिवार, और यहाँ ब्रिस्बेन से जोनी और सविता आपको बहुत सारे से प्यार भेज रहे हैं। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन अनिता, एंजॉय योर डे। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी।

चलते हैं अगले गीत की फरमाइश की ओर बढ़ते हैं दोस्तों. हम चलते हैं शिकागो की ओर. फरमाइश है शिकागो से हमारे पास अमला सिंह की ओर से आपके लिए. आपकी फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत.

0: इस गीत को फरमाइश करने वाले थे आमला सिंह, जो हमें सुन रहे हैं शिकागो में।
1: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: केडरन पार्क से हमारे पास अगला गीत के लिए फरमाइश है जोड़ी और सविता की ओर से. और सविता जी, आप सुनना चाहती है सुदामा का गीत, तो सुनते हैं सुदामा का गीत है, लेकिन इसे मैंने लिया है लेटेस्ट बीट्स पर.

बहुत प्यारा श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी आपने सुना। थका हूँ टूटा हूँ पर होठों पे तेरा नाम, सुदामा आया है तेरा मित्र द्वारिका के शाम। ऐसे फरमाइश करने वाले थे जॉनी और सविता फ्रॉम कैडरन पार्क। हम चलते हैं सिडनी की ओर दोस्तों। सिडनी से हमारे पास फरमाइश है ग्रीन एकर सिडनी से रजेन और मालती प्रसाद की ओर से। आप दोनों के लिए अगला गीत।

और रफी साहब की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग धर्मेंद्रा पर्दे पर, जिसे फरमाइश करने वाले थे रचिन मालती प्रसाद जो हमें सुन रहे हैं ग्रीन एकर सिडनी में। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे स्टूडियोज में 4:15 बज चुके हैं।

0: हमारी साथ शामिल हो गई थी लक्ष्मी फ्रॉम मेनली वेस्ट जो हमारा प्रोग्राम सुन रही है. थैंक यू लक्ष्मी फॉर ज्वाइनिंग मी.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
2: तो उमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा.
2: बिल्कुल खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई. ओमसॉग केयरिंग विद डिग्निटी.
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से. और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
3: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435. याद रहे 0400664435. या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com.
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.
0: रेड बैंक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जहां पर एक छोटी मोटी पार्टी, ग्रुप पार्टी, फैमिली पार्टी और कुछ विजिटर्स भी सिडनी से आए हैं जो हमारा प्रोग्राम वहां पर सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच. सबसे पहले आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू अजनेश, जो अजनेश शर्मा जो इस पार्टी में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. रेड बैंक में गंगा है, गीता है, मिस्टर एंड मिसेस शिवराज, अजनेश शर्मा फ्रॉम सिडनी. आपका स्वागत है रेडियो ब्रिस्बेन प्रोग्राम पर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक एंड दे यू लविंग द प्रोग्राम. आई रियली अप्रिशिएट दैट. सबसे पहले अजनेश आपके लिए पहला गीत. अली फो अजनेश शर्मा फ्रॉम सिडनी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी फीडबैक पहुंचाई है. थैंक यू सो मच.

गीत को खास करके हमने बजाया था अजनेश के लिए जो सिडनी से आए हैं और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं रेड बैंक में गंगा गीता और साथ में मिस्टर एंड मिसेस शिवराज के साथ में. वंस अगेन अजनेश, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक. तो चलते हैं जो अगला गीत है आप सभी के लिए है गंगा गीता अजनेश और मिस्टर एंड मिसेस शिवराज के लिए जो हमें सुन रहे हैं पार्टी एंजॉय कर रहे हैं रेड बैंक में. आप सभी के लिए पार्टी सॉन्ग चाहिए तो चलते हैं सुनते पार्टी सॉन्ग.

और पार्टी एंजॉय कर रहे हैं वंस अगेन रेड बैंक में गंगा, गीता, मिस्टर मिसेस शिवराज और साथ में अजनेश जो सिडनी से आए हैं. अजनेश, वंस अगेन थैंक यू फॉर योर फीडबैक. हम चलते हैं कैलिफोर्निया, यूएसए की ओर दोस्तों, और बहुत देर से प्रगति सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं मैक्स प्रसाद. हाय मैक्स.

और इस गीत को फरमाइश किया था मैक्स प्रसाद जो हमें सुन रहे हैं कैलिफोर्निया यूएसए में। दोस्तों फरमाइश है हमारे पास लेस वेगस से जहां हमें सुन रहे दिनेश सोलंकी दक्षा सोलंकी, साथ में है उनके परिवार ग्रैंड चिल्ड्रन आरफ जयडन और अनाया। आप सभी के लिए अगला गीत।

लेस वेगस से हमारे पास फरमाइश आई थी दोस्तों, जहां पर हमें सुन रहे दिनेश सोलंकी, दक्षा सोलंकी, साथ में आरव जयदन और अनाया। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 71 किलोहर्ट्ज पर, हमारे स्टूडियो 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से। यह है शाम का सफर और इस वक्त बस हमारे स्टूडियोज में 25 मिनट होने वाले हैं 4:07 है हमारा आपका ठीक 5 बजे तक आज आपके साथ सु। और हम चलते हैं अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं, एक बार फिर हम चलते हैं एलआई लॉस एंजलिस, जहां हमें सुन रहे हैं विनय, प्रेमिला, साथ में रोनील, क्रिस्टीन और साथ में राया। आप सभी के लिए अगला गीत।

तो लेटेस्ट रिमिक्स पर आपने इस गीत को सुना दोस्तों, और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई थी। फरमाइश कहाँ से आई थी? लॉस एंजलिस से, और जहाँ पर एक छोटी सी राया भी हमारा प्रोग्राम सुन रही है। राया का कहना क्या है? राया का कहना है कि राया वहाँ पर सबसे छोटे है और उनका नाम रेडियो पर फर्स्ट आना चाहिए। तो चलते हैं यूएसए से जो फरमाइश आई थी अलाई से, और फरमाइश करने वाली थी छोटी सी राया, उनकी मम्मी क्रिस्टीन, रोनिल, साथ में नाना और नानी, विनय और प्रेमिला जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं लॉस एंजलिस में। आप सुन रहे हैं रेडियो बिस्वानी दोस्तों, साथ हमारा आपका ठीक ब्रिस्बेन टाइम 5 बजे तक होगा।

तो इस गीत को फरमाइश करने वाली थी हेरिटेज पार्क से साधना। और हम चलते हैं एक बार फिर सैक्रामेंटो यूएसए, और सैक्रामेंटो में एक बार फिर अपना गीत सुनना चाहती हैं। फरमाइश करने वाली है ललिता गौतम, जो वहाँ पर बहुत रात होगी, सोना भी चाहती है, प्रोग्राम को एंजॉय करना चाहती है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलते हैं आपके लिए अगला गीत।

सुमित्रा सिंह की आवाज में फुल और बिना चटनी की फरमाइश आई थी हमारे पास सैक्रामेंटो यूएसए से। हम चलते हैं दोस्तों पैरामाटा सिडनी की ओर। इसी के साथ साथ हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बस 20 मिनट यानी कि पौने पांच बज चुके हैं हमारे स्टूडियोज में, साथ है हमारा आपका ठीक 5 बजे तक। तो हम चलते हैं पैरामाटा सिडनी से फरमाइश आई हमारे पास रॉबिन और उषा की ओर से। आप दोनों के लिए अगला गीत।

दोस्तों, इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे सनी और अमीजा, जो हमें सुन रहे हैं बैंगस्टाउन सिडनी में। इसी के साथ साथ हमारा चलने का समय हुआ, बस 5 मिनट रह गए हमारे स्टूडियोज में 5 बजने में। लेकिन आप सभी के लिए एक और थोड़ा सा गुड न्यूज है। और गुड न्यूज क्या है, आपको पता है कि नेक्स्ट टू संडेज को रोहित सिंह यहाँ पर हमारे स्टूडियोज में नहीं आएंगे। तो आपको मेरा जितना साथ देना है, जो भी फरमाइश करना है, 12:30 बजे से हमारा आपका साथ होगा। तो सुनते रहेगा रेडियो ब्रिजमानी, 5 बजे से आपके साथ हो जाएगी शशि चौखन। हमें इजाजत दीजिए दोस्तों, नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक अ लवली डे, हैव अ नाइस वीक।

जी मेरी आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं शशि जोखन आपका साथ देने के लिए आ चुकी हूँ और पूरे 9 बजे तक यानी कि 5 से 7 बजे तक आपका साथ मैं दूंगी एंड आप इसी तरह हमारा साथ देते ही रहिए। कहते हैं ना कि हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है जिंदगी। हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है जिंदगी। क्या सुख क्या दुख, बड़ी आस है जिंदगी। ठीक है ना, विश्वास करते हो आप? नहीं करते हो? कहते हैं हर पल मुस्कुराओ, बड़ी आस है जिंदगी। क्या सुख क्या दुख, बड़ी आस है जिंदगी। ना कभी शिकायत करो, ना कभी उदास रहो। ना कभी शिकायत करो, ना कभी उदास रहो। जिंदा दिली से जीने का एहसास है जिंदगी। ठीक है, सो करती हूँ आपका तह दिल से स्वागत, कहती हूँ नमस्कार, केम छो, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आप जहाँ भी कार्यक्रम सुन रहे हो, बस आपका स्वागत कर रही हूँ।

हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सा गीत ये, और कितने सही ढंग से, कितने सुंदर ढंग से इस गीत पर पूरी तरह से, आज मुझे लगता है शायद मेरी आवाज़ अच्छी तरह नहीं आ रही है, मगर देखिए जीवन का एक बहुत ही अच्छा तरीका हमको सिखा गया है ये गीत, और जिस तरह से इसकी लिरिक्स है अगर आप सही ढंग से समझेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। मगर देखिए चलते हैं, दूसरा गीत सुनते हैं, देखते हैं क्यों आज कुछ क्लियर नहीं है मुझे लग रहा है, मगर चलो देखते हैं कैसा है।

खैर, इसको मैं छोड़ रही हूँ, मुझे लग रहा है कुछ ठीक नहीं है आज, मगर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलो अगला गीत सुनते हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया सा गीत है।

जी, बहुत ही बढ़िया सा नगमा आपके लिए पेश कर रही थी। और हाँ जी, विंटर का मौसम शुरू हो चुकी है, जून महीना। अभी हम आज 14 तारीख जून का दिन है, एंड पता है आपको कि इंटरनेशनल योगा डे संडे 21 जून को मनाई जाएगी विश्व भर में। और इस पर भी आप ध्यान रखिए, अगर आप योगा में रुचि रखते हैं या योगा सीखना चाहते हैं तो बेशक आप कांटेक्ट कीजिए। जो लोग आपके यहाँ पर, कहीं पर भी आप प्रोग्राम सुन रहे हो, विश्व भर में लोग सुनते हैं रेडियो ब्रिजवानी स्टेशन। ये जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ना, मगर अभी तो आप सुन रहे हो एक रंगीन शाम आपके नाम, और मैं शशि जोखन आपका साथ दूंगी बस पूरे पूरे पूरे 7 बजे तक। ठीक है, तो आप भी हमारा साथ इसी तरह दीजिए। एंड अब चलते हैं, एक और गाना आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, और इस बार फिल्म स्लम डॉग मिलेनिया से हमने इसे आपके लिए चुना है। सो आई होप आप पसंद करेंगे। हाँ जी, ब्रिस्बेन का मौसम सुहाना है।

हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही बढ़िया सा गीत आप सुन रहे थे. एंड ये भी स्लमडॉग मिलनिया का नगमा था. एंड आई होप आप एंजॉय किए. तो देखिए, ऐसे बहुत सारे नगमे हैं हमारे पास, मगर ख़ास तौर से अभी मैं आपका स्वागत करती हूँ. अगर अभी अभी आपने हमारे प्रोग्राम में ट्यून इन किए हो, एक रंगीन शाम आपके नाम, और यह है रेडियो ब्रिजवानी 1701 का अपना ही कार्यक्रम. और आज एक बहुत ही हरा भरा कार्यक्रम लेकर आई हूँ, क्योंकि नए और पुराने गीतों का संगम ओबियसली, एंड इसके साथ साथ छोटी छोटी बातें अपनों की भी इसमें लाई हूँ, और इसके साथ साथ पारिवारिक विषय. और आप सोच ही रहे होंगे कि आज पारिवारिक विषय में कौन से टॉपिक है. तो देखिए, आज 14th of June है, बहुत ही स्पेशल डे है, और वो इसलिए क्योंकि आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है. दुनिया भर में रक्तदान के महत्व को बढ़ावा देने और वॉलंटरी रक्तदाताओं को सम्मान देने के लिए ये मनाया जाता है. तो आज हमने सोचा कि पारिवारिक विषय में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे. तो 6 बजे के बाद हम इसे लेकर ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे, और आप भी इनसे जुड़ जाइए. और यही सब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि वर्ल्ड डोनर दिवस कब मनाया जाता, क्यों मनाया जाता है, और ख़ास इसी दिन क्यों मनाई जाती है. और इसके साथ साथ अगर आप योगदान करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हो, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, और कई मिथ भी है ब्लड डोनेशन को लेकर, इस पर हम कुछ चर्चा डालेंगे करेंगे, मगर ये सभी 6 बजे के बाद, ठीक है. मगर अभी तो चलते हैं, एक गीत सुनते हैं. और ये जो गीत है ये एक्चुअली बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, एंड आप लोग जानते भी हैं इस गीत को. प्रियंका चोपड़ा बहुत ही चर्चित में आई थी इस गीत को लेकर.

हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सा गीत। एंड देखिए, प्रियंका चोपड़ा बेहद सक्सेसफुल एक्ट्रेस है एंड बहुत ही अपने फ्यूचर को इतनी अच्छी से अलाइन की है कि कहाँ से कहाँ वो पहुँच गई है। एंड अब एक बच्चे की माँ भी हो गई है, मगर फिर भी फिल्मी दुनिया अपने करियर को नहीं छोड़ी है और आगे बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने एक एक बार एक बात कही थी जो मुझे पढ़कर उसे बहुत ही बढ़िया मुझे ऐसा लगा कि व्हाट अ गुड थिंग टू से, है ना। शी सेड, यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, यू कैन आइदर हेट मी और यू कैन लव मी, बट यू कैन नॉट डिनाई मी। सो या दैट्स व्हाट शी सेइंग। एंड उसी को लेकर ये आगे बढ़ती ही गई और आज भी वो इतना तरक्की कर रही है, विच इज सच अ गुड थिंग, है ना। तो ऐसे ही है कि लोग अगर आगे कर आगे ऐसे बढ़ना है आपको, तो किसी को देखकर या कोई आपको कैसे देख रहा है, कोई आपको कैसे बोल रहा है आपके बारे में, उन सभी बातों को छोड़कर आप जीवन में बस आगे बढ़ते ही रहिए। दैट्स वेरी गुड। हाँ,

हाँ जी, 90s के गीत हम ये सुन रहे थे एंड अभी भी 2016 में इतना पॉपुलर साउंड, इतनी बढ़िया साउंड कर रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि इतने पुराने गीत हम सुन रहे हैं. तो देखिए, चंद नई फिल्में आने वाली है, तो न्यू रिलीजेस जिसे हम कहते हैं ना, अपकमिंग रिलीजेस, तो बता देती हूँ आपको. ये खास तौर से अगस्त में, अगस्त यही इसी साल एक नई फिल्म है भेड़िया, ये आने वाली है. और सितंबर 2026 में मिर्ज़ापुर द मूवी, वो आने वाली है. प्लस हाली एंटिसिपेटेड मूवी रामायणा, हाँ जी रामायणा आने वाली है. एंड ये शायद नवंबर 2026 में आप इसे देख सकेंगे. सो ऐसे कई फिल्म्स हैं जो रिलीज होने वाली है, और इन्हीं रिलीजेस के साथ इंतज़ार करते करते हम कई और बीच में ऐसे मूवीज आएंगे जो इतना पॉपुलर शायद नहीं होगी, मगर फिर भी बहुत सारे मूवीज बनते हैं बॉलीवुड में, तो बहुत सारे मूवीज बनते हैं. तो एनीवे, अब हम चलते हैं एक और मूवी आपके लिए, सॉन्ग आपके लिए लेकर आए हैं. और ये कविता सुब्रमण्यम कैकेयी, और ये है एक्चुअली देवदास का नगमा. होपफुली आप पसंद करेंगे इसे.

हाँ जी, मुझे पता नहीं आप ये फिल्म देखे हो या नहीं, मगर देवदास एक बहुत ही इसकी जो कहानी है ना, ये ट्रेजिक लव स्टोरी जिसे कहते हैं ना, दुखांत प्रेम कहानी, जो बहुत ही दुखित करती है, मगर बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस फिल्म में ऐश्वर्या राय भी साथ में, इसकी एक और एक्ट्रेस थी माधुरी दीक्षित, हाँ जी, और शाहरुख खान, इन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से इस फिल्म को पूरा किए, एंड बहुत ही सही ढंग से इसे संजय लीला भंसाली जी ने बनाए हैं, उन्हीं की ये फिल्म है। और जैसे हमने कहा कि ये कहानी एक ट्रेजिक लव स्टोरी है, और इसमें पारो चंद्रमुखी के इर्द गिर्द घूमती है, जो प्यार, अहंकार, सामाजिक भेदभाव और मेरे ख्याल से आत्मविश्वास को दर्शाती है। सो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो लाकर देखिए जरूर। इनकी जो सेट्स है और जो कपड़े कैसे पहनते हैं, बंगाली आप कह सकते हैं, बंगाली ढंग से है तो इसे बनाई गई है, तो बहुत ही बढ़िया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये कहानी। तो आपको अगर मौका लगे तो जरूर देखिए। तो गुड़नल इश्क मीठा होए, अभी एक गीत जो मैं बजाई थी ना, तो इसकी अलग सी वर्जन, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इसमें अनिल कपूर, सोनम और हर्षदीप दिखे थे, और ये फिल्म भी बहुत ही बढ़िया थी। गाने भी इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे थे।

हाँ जी, जब कोई गीत बज रहा हो तो आप साथ साथ गुनगुना सकते हो, और कभी जी करे तो आप थोड़ा डांस वांस भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऐसे नगमे सुनते हैं ना तो जी खुश सा हो जाता है। एंड आप कुकिंग कर रहे हो या रास्ते पर भी हो तो आप गुनगुना तो सकते ही हो साथ में। तो देखिए, ऐसे कई सॉन्ग्स होते हैं जो हम आपके लिए ले लेकर आते हैं हर हफ्ते, और आपको पसंद भी आती है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मुझे न्यूज़ मिल जाती है कि आप लोगों ने कितना पसंद किया, प्रोग्राम किया या नहीं किया, ये भी मुझे पता चल जाता है। मगर देखिए, हर बार हम कुछ ऐसे ऐसे बातें लेकर आते हैं आपके लिए जो आपको आपके लिए ठीक हो, हमारे लिए अच्छे हो, और हमें कहते हुए भी खुश होती है जो हम आपको बताते हैं, जो कहते हैं, तो उससे हमको भी कुछ सीखने का मौका मिलता है, ठीक है ना। तो जैसे आज हमने कहा कि वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है, आज 14th of June, तो आज 6 बजे के बाद बिल्कुल आप सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम उसी पर चर्चा करेंगे आज। और छोटी छोटी बातें अपनों की, तो आज हम जापान, जापान एक ऐसा देश है जहाँ बहुत से लोग घूमने जा रहे हैं। आप घूमकर आए हो क्या? मैं तो नहीं गई हूँ, मगर कुछ लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, मगर कुछ लोग वहां से आते हैं तो उनकी तबीयत में कुछ गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी, क्यों मुझे पता नहीं। मगर देखिए, सभी देश अलग अलग होते हैं, तो आज हम जापान के बारे में आपको कुछ सुनाएंगे, ठीक है, कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ वो बहुत ही सही ढंग से चलने की कोशिश करते हैं। वो जो कुछ करते भी है बहुत ही सही ढंग से करते हैं, और अपने जो अपने लोग हैं, वहाँ के बसंदा लोग हैं, उनकी बहुत देखरेख करते हैं। तो ये हम कुछ ही देर में आपके लिए लेकर आएंगे, मगर अभी तो आप सुनिए ये नगमा, और फिर उसके बाद में हम आपको वहाँ लेकर चलेंगे, ठीक है, जापान लेकर चलेंगे। हिंदी में तो जापान कहते हैं ना। तो बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, अभिजीत की आवाज में है ये, फिल्म दिल ही दिल में का ये नगमा। संगीत इसमें अय्यार रहमान ने दिए थे और लिरिक्स महबूब द्वारा।

0: हाँ जी, बहुत बहुत ही खूबसूरत ये नगमा। आप पहले बहुत दिनों बाद मैंने इस गीत को बजाई एंड मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और हाँ जी, जैसे हमने कहा कि चलो सुनते हैं, जापान में सभी कुछ इतना ओडली फैशन में होते हैं ना, जो लोग गए हैं वहाँ उनको पता होगा, बहुत ही ओडली फैशन में वो लोग सभी कुछ करते हैं। अगर वहाँ पर कुछ हादसा हो जाता है या किसी तरह की समस्या हो जाती है, तो आपको क्या पता है वो लोग पहले अपनी समस्या पर क्यों यानी वाई लगाते हैं, वाई, WHY। और आप सोच रहे होंगे ये भला क्यों, तो आप सुनिए कि क्यों।
1: हर समस्या में 5 बार वाई लगाते हैं, और पांचवी बार वाई लगाने के बाद जो जो उत्तर मिलता है,
2: वाई माने क्यों।
1: हाँ क्यों,
2: हाँ
1: फिर उसका समाधान करते हैं। मैं आपको
2: अच्छा
1: ऐसे एक्सप्लेन कर देता
2: जी।
1: हूं कि जैसे हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट हो गया तो रोड रिपेयर कर देंगे, बात
2: हाँ
1: खत्म।
2: हाँ
1: वो जापान में ऐसा नहीं है। रोड एक्सीडेंट हुआ तो एक शीट भरी जाएगी, वाई रोड क्यों सड़क टूटी, उसका फिर जांच होगी।
2: अच्छा
1: मटेरियल खराब था,
2: हाँ
1: वाई
2: हाँ
1: ठेकेदार ने ठीक से मटेरियल नहीं लगाया, वाई तो पता चला तो कमीशन हो गया। तो
2: हाँ
1: कमीशन क्यों हो गया, हुआई जी हमारा कानून गड़बड़ है तो कानून बदल दो। तो वहां सड़क रिपेयर करने के साथ साथ कानून को भी रिपेयर कर दिया जाता है।
2: अच्छा
1: किसी व्यक्ति ने आत्महत्या किया तो हमारे यहाँ क्या हुआ, आत्महत्या किया तो जिसके कारण आत्महत्या किया उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, बात वहीं
2: हाँ
1: खत्म।
2: हाँ
1: वहां ऐसा नहीं है। अगर किसी ने आत्महत्या किया तो थाने पे एक शीट अलग से भरी जाएगी, उसको 5W एनालिसिस कहते हैं,
2: हाँ
1: और उस शीट में थानेदार जो जांच के अधिकारी हैं 5 बार वाई लगाएंगे,
2: अच्छा
1: आत्महत्या क्यों किया, मानसिक रूप से तनाव में था, मानसिक रूप से तनाव में क्यों था, घर में खाने के नहीं थे, घर में खाना क्यों नहीं
2: ओ
1: था, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो पहुंचना चाहिए था वो पहुंचा नहीं, वो क्यों नहीं पहुंचा, वो जी बीच में भ्रष्टाचार हो गया, तो भ्रष्टाचार क्यों हुआ जी, भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं मिलती, भ्रष्टाचारियों को सजा क्यों नहीं मिलती, हमारा कानून गड़बड़ है, पहले कानून बदलो।
2: ओ
1: ये सिस्टम है वहां का,
2: मतलब सीधे जड़ पे
1: सीधे
2: चोट
1: जड़ पे
2: करके।
1: 5 बार वाई लगा के सीधे
2: हाँ
1: जड़ पे काम होता है,
2: हाँ
1: हमारे यहाँ केवल सतही काम होता है। तो जापान में क्या करते हैं, हर समस्या में 5 बार वाई लगाते हैं, और
0: हाँ
1: पांचवी बार
0: जी,
1: वाई
0: देखा,
1: लगाने के बाद जो
0: 5वीं बार वाई लगाने के बाद पूरे पॉलिसी
1: फिर
0: ही
1: उसका
0: चेंज कर
1: समाधान
0: देते
1: करते हैं।
2: हैं।
1: मैं
2: अच्छा
1: आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता
2: जी,
1: हूं कि जैसे
0: तो
1: हमारे यहाँ,
0: देखिए, हमारे देशों में ऐसा हो तो ठीक ना हो, दैट विल बी अमेजिंग ना, कि कुछ गड़बड़ ही ना हो, बस क्यों क्यों क्यों करते करते बस सभी काम में सुधार हो जाएगी। मगर यहाँ ऐसे नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं मुझे पता नहीं है। ये लोग खींचते बहुत हैं ना, बहुत ज्यादा खींचते हैं, एक छोटी सी बात सालों साल लग जाते हैं चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने में, ये चेंज करने में, वो चेंज करने में, ऐसा करते करते सालों बीत जाते हैं। एनीवे, चलो एक और गीत हम सुनते हैं। एंड इस बार जो नगमा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये फिल्म खूबसूरत से मैंने ली हूँ आपके लिए, सो इसे आप सुनिए।

हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सही है नगमा, उम्मीद है आप पसंद किए होंगे। एंड जी हाँ, आपको याद है ना, पता तो है कि वर्ल्ड सॉकर कप शुरू शुरू हो गई है, एंड बॉलीवुड से नोरा फतेही ने वहाँ पर ओपनिंग डांस भी की थी, वन ऑफ देम। सो लोगों ने उन्हें बहुत ही पसंद किया, और मैं तो नहीं अभी एक भी गेम देखी हूँ, मगर फिर भी जो लोग देखते हैं बहुत ही पसंद कर रहे हैं एंड एन्जॉय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए, और भी कई बातें हैं आपसे बताने के लिए, बट टाइम टाइम से मैं सोचती हूँ क्या क्या क्या लेकर आई हूँ आपके लिए। सो एनीवे, पहली बात तो मैं ये आपसे बताना चाहती हूँ कि आज यहाँ न्यूजीलैंड में, पता है आपको, 6 से 7 बजे के बीच में, अभी आज ही रविवार को, पूरे देश में देश की इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट सिस्टम जो है उसकी वार्षिक यानी एनुअल टेस्ट हुई। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे है, मुझे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में हो रहा है या नहीं, मगर यहाँ न्यूजीलैंड में हो रही है। और ये बहुत ही बढ़िया ढंग से इसे ये लोग करते हैं, मगर आप सोच रहे होंगे कि जैसे कैसे होता है ये। एक्चुअली हमारे मोबाइल फोन में एक लाउड बज के साथ टेक्स्ट मैसेज आती है ना कि अगर कुछ भी हो जाए, चाहे आपका फोन साइलेंट पर भी हो या फिर लो वॉल्यूम पर हो, फिर भी ये खबर आपके पास पहुंचेगी। एंड इसकी शुरुआत एक्चुअली 2018 में हुई, जब COVID-19 पेंडेमिक हुई थी, तो उसके साथ। और फिर चाहे साइक्लोन हो, फॉरेस्ट फायर हो, केमिकल लीक्स हो, ये हमारे लिए सेटअप की गई है यहाँ न्यूजीलैंड में। तो वी फर्स्ट स्टार्टेड हियरिंग देम इन 2018। एंड इसके साथ साथ भारत की ओर चलते हैं, तो भारत में, भारत के हरियाणा इलाके में, हाँ जी हरियाणा इलाके में, एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और आप सोच रहे होंगे वैसे तो बहुत वायरल हो रहे हैं, इसमें क्या नई बात है, मगर जब एक दुल्हन नाचते हुए हॉल में दाखिल हुई और दोनों परिवारों के बीच विवाद खड़ा हो गया, तो ये एक स्पेशल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ना। तो दूल्हे के जो पिता और बड़े भाई थे ने नाच पर आपत्ति जताई, एंड दे वे वेरी वेरी अनहैप्पी, जिसके चलते तीखी बहस भी छिड़ गई और शादी भी कैंसिल हो गई, आपको पता है। और वैसे तो आप जानते हैं हिंदू धर्म में, क्यों कोई भी हमारे धर्म है, दुल्हन बहुत ही शांत तरीके से हॉल के अंदर आती है ना, जब जब शादी का समय होता है तो बहुत ही शांत माहौल होता है, एंड लोग एकदम इंतज़ार करते रहते हैं कि दुल्हन क्या कैसे चल रही है, क्या पहनकर आई है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ देखा जाता है। मगर जब एक दुल्हन नाच कर अंदर आती है तो फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट, है ना। तो जो हस्बैंड के साइड की फैमिली थे तो उन्होंने बिल्कुल ये पसंद नहीं किया। एंड मगर देखिए, ये जो आजकल के फिल्में आती है ना, बॉलीवुड होते हैं, ये सोशल मीडिया होते हैं, इसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। एंड आजकल ऐसे बदलाव देखा जा रहा है जो शायद हमारे धर्म में ये सब नहीं पसंद करते हैं लोग, पर एनीवे, रिसेप्शन वगैरह में यस दैट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल, आजकल तो होता है, यह है ना, मगर शादी में जब ऐसे होती है, आई डोंट नो व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस, पर बहुत बार देखा गया है कि लोग पसंद नहीं करते हैं। सो गर्ल्स, अगर शादी होने वाली है तो बी वेरी केयरफुल, हाँ। सो चलते हैं अगला गीत जो आपके लिए लेकर आई हूँ, ये आप सुनिए।

हाँ जी, आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम। और हाँ जी, मैं शशि जोखन आपका साथ दूंगी ठीक 7 बजे तक। एक्सक्यूज मी फॉर दिस। हाँ जी, तो कहते हैं ना कि ये जो मौसम है, ये मौसम बहुत ही तेजी से बदल रही है। एंड क्यों ऐसा मौसम है? तो ये मौसम में अभी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खैर, आप ये गीत सुनिए एंड देन

देखिए, आज का जो शब्द है, अंग्रेजी शब्द जिसे आपको हिंदी शब्द को ढूंढना है, और वो है मेरा, MIRROR, मेरा आज का शब्द है। और आप उसकी जो हिंदी शब्द है उसे ढूंढिए, और 7 बजे के नज़दीक मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो अभी तो चलते हैं शाहरुख खान की फिल्म से ली गई ये नगमा, और गीत के बोल है जालिमा। और बस इस गीत के बाद पारिवारिक विषय।

हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सा गीत आप सुन रहे थे. एंड इस फिल्म को भी लोगों ने बहुत सराहा था. एंड फिल्म रईस का ये नगमा है और थी जो आप सुन रहे थे. तो देखिए, अब हम चलते हैं आपको लेकर पारिवारिक विषय की ओर. और आज तो एक मेरे ख्याल से एक बढ़िया टॉपिक है. और इस टॉपिक में आज आज का दिन जो है ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है. एंड आप में से कई लोग शायद ब्लड डोनर हो भी, मुझे पता नहीं है, मगर दुनिया भर में रक्तदान के जो महत्व को बढ़ावा देने और वॉलंट्री रक्तदाताओं को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे. और लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का भी अवसर है इस समय मिलता है. और जो अपने रक्तदान से अनगिनत, हाँ जी, अनगिनत जिंदगियों को बचाने में योगदान देते हैं. हर साल इस खास दिन पर लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और अभियान भी चलाए जाते हैं. तो देखिए, रक्त यानी ब्लड की आवश्यकता किसी भी समय और किसी भी व्यक्ति को पड़ सकती है ना? मानते तो होंगे आप. इसलिए सुरक्षित और पर्याप्त रक्त भंडार बनाए रखना बेहद जरूरी माना गया है. तो आइए हम जानते हैं कि ये दिन कब मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, ये सभी कुछ. और कुछ मिथ भी है ब्लड डोनेट करने पर, तो इसको भी आज हम थोड़ा क्लियर करेंगे, ठीक है, करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कहते हैं. तो देखिए, जो वर्ल्ड डोनर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस हर वर्ष 14 तारीख जून को मनाया जाता है. और हर साल अलग होती है इसकी जो थीम. और इस वर्ष 2026 की थीम है मानवता की एक बूंद रक्तदान करे जीवन बचाए. यानी अगर इंग्लिश में आप कहते हैं तो आई गेस कहते हैं वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स, ठीक है. और ये थीम लोगों को नियमित और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित करती है. तो वर्ल्ड डोनर दिवस क्यों मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डोनर डे समाज में मानवता, सहयोग और जीवन बचाने के संदेश को मजबूत करता है. और इस दिवस को वॉलंटरी ब्लड डोनर्स के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जैसे मैंने पहले आपको बताई. और साथ ही लोगों को ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि रक्तदान करके किसी की जान बचाई जा सकती है. ऐसे ही नहीं लोग ब्लड डोनेट करते हैं, इसके पीछे पर्पस होती है ना. तो रक्तदान का महत्व क्या है? तो ब्लड डोनेशन से घुटनों का सर्जरी, कैंसर और कैंसर उपचार, थैलेसीमिया और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को नया जीवन मिल सकती है. और ये यूनिट ब्लड कई लोगों की जान बचाने में मददगार कर सकती है, ठीक है. और कौन कर सकता है योगदान? तो आमतौर पर 18 से लेकर 65 यानी 65 वर्ष की आयु का स्वास्थ्य व्यक्ति जो स्वस्थ होते हैं वो रक्तदान कर सकता है. हालांकि रक्तदान से पहले स्वास्थ्य संबंधी कुछ जांच की जाती है, जैसे कि आपके ब्लड टाइप और रेड सेल एंटीबॉडीज वगैरह वगैरह. अगर ये जांच की जाती है कि कहीं आपको कोई इन्फेक्शस डिजीज तो नहीं है, जैसे HIV वगैरह ना, तो अगर ये सब है तो पॉसिबल नहीं है, आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं. क्या रक्तदान से शरीर में खून खत्म हो सकती है, आप शायद सोच रहे होंगे? तो ये भी एक गलत मिथ है कि रक्तदान से शरीर में खून खत्म हो जाएगा. ये बिल्कुल नहीं. एक इंसानी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है. हालांकि ये शरीर के वजन से भी पर भी निर्भर करता है, ठीक है, ये याद रखिए, ये शरीर के वजन पर भी निर्भर करता है. और वहीं रक्तदान के दौरान लगभग 450 मिलीलीटर खून आपके शरीर से निकाला जाता है. और सेहतमंद व्यक्ति इतना रक्त 24 से 48 घंटों में फिर से बना लेता है. तो ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप खून देते तो हो
मगर विद इन अ डे और टू आपके शरीर में ये खून फिर से बन जाता है. अमेरिका को ले लीजिए, तो अमेरिका में आप रक्तदान साल में 12 बार कर सकते हैं, यानी प्रत्येक 4 हफ्ते में एक बार. और वहीं अगर प्लेटलेट्स दान की बात करें तो इसे आप सालाना 24 बार तक कर सकते हो. वहीं नाको संस्था के मुताबिक भारत में पुरुष 3 महीने में एक बार और महिलाएं 4 महीने में एक बार रक्तदान कर सकती है. देखिए सभी देशों में अलग अलग होते हैं ना, तो बस कुछ ही देर में हम आपको कुछ और जो मिथ्स हैं हमारे इसके बारे में बताएंगे. मगर उससे पहले आप सोच रहे होंगे कि क्या आप रक्तदान करने के योग्य है या नहीं. आप तभी योग्य होंगे, नंबर 1, अगर आप पूर्ण रूप से सेहतमंद हैं. नंबर 2, आपका वजन कम से कम 50 किलो और ज्यादा से ज्यादा 160 किलो होना चाहिए. इट डिपेंड्स है ना, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में शायद अभी मुझे बिल्कुल 100% मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं नहीं कहूँगी. मगर देखिए हर एक देश का अलग अलग होता है. और तीसरा है, आपकी उम्र 18 से लेकर 66 साल की होनी चाहिए. अलग अलग देशों में ये भी नियम पर निर्भर करता है. और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में 75 ईयर्स तक पॉसिबल है. आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है. और चौथा ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो और ब्रेस्ट फीड करती हो तो आप योग्य नहीं होंगे ब्लड डोनेट करने के लिए. और अगर आप HIV से जुड़ा कोई भी इतिहास है तो आप ऑब्वियसली नहीं डोनेट कर सकते हैं. तो एक बार फिर मैं आपसे कहती हूँ कि ये जो मुख्य बातें हैं ना, वो उनकी जो उद्देश्य है वो है सुरक्षित रक्त की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना. इस दिन का महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, और रक्तदान महादान है तो जरूरमंदों को नया जीवन देना चाहिए, मदद करनी चाहिए. और गतिविधियां क्या है, इस अवसर पर भारत और विश्व भर में ब्लड डोनेशन कैंप, डोनर सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं. और रक्तदान से जुड़े लाभ, तो वो एक हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है और एक यूनिट ब्लड से 3 जिंदगियां बचाई जा सकती है. खैर चलो एक गीत सुनते हैं, फिर उसके बाद में और बातें, ठीक है.

0: they chanted,
1: "When I will dance, my dance shall speak for me."
0: Shaam se ratri tak.
2: Superb, superb, fabulous, outstanding.
3: Nahi, aise nahi. खुल के बोलिए कैसा लगा, लगा कैसा।
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी, आपकी पहचान।
2: हिल मत चल।
3: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा? ओके
4: हाँ जी, क्या हो रहा है? आज मौसम बहुत ही सुहाना है ब्रिस्बेन में। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। मुझे कहा गया है कि आप लोग, जिन लोगों से मैंने बात की वो लोग बहुत ही खुश हैं। इट्स कूल, बहुत गर्मी नहीं है। और आज मौसम मेरे ख्याल से, वैसे तो कोल्डेस्ट मंथ आपके जुलाई होता है ना, और एवरेज उस समय लगभग 15 डिग्रीज होती है, मगर आज तो थोड़ी धूप भी निकली हुए हैं, और धूप और छांव एक साथ साथ है ना, और लगभग 20 डिग्रीज मेरे ख्याल से, और इट फील्स लाइक 24 डिग्रीज। हाँ जी, तो ठीक ही है ना, गर्मी कुछ हद तक कम है, और मगर धीरे धीरे आज रात्रि तक ये कम हो जाएगी। एंड तो जब कूल होती है तो रात को नींद भी अच्छी तरह आती है ना। मगर चलो, अभी तो हम चलते हैं आपको लेकर ब्लड डोनेशन के बारे में जो मिथ्स है उसको बताती हूँ, मगर आपको याद दिला देती हूँ कि आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम। अगर अभी अभी आप हमारे साथ जुड़ गए हो तो स्वागत भी करती हूँ आपका, और आपको याद दिलाती हूँ कि मैं हूँ शशि जोखन, आपका और हमारा ये साथ पूरे 7 बजे तक होने को है, और लगभग आधा घंटा आप कह सकते हो। एंड चलो, हम लेकर आपको चलते हैं ब्लड डोनेशन की ओर, कि क्यों मिथ जो है, क्यों अलग अलग बातें सुनने को मिलती है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो ज्यादातर सेहतमंद लोग रक्तदान कर सकते हैं। तो रक्तदान करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और वैसे तो रक्तदान के कई नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन लोगों के बीच इससे जुड़े कई मिथ्स, जैसे हमने कहा, आधे अधूरे सच भी होते हैं जिन्हें वो मानते आ रहे हैं। जैसे कि पहली मिथ तो ये है, वेजिटेरियंस यानी शाकाहारी लोग कहते हैं कि शाकाहारी लोग रक्तदान नहीं कर सकते। तो एक सर्वे के मुताबिक कई लोगों का मानना है कि शाकाहारी लोग रक्तदान नहीं कर सकते, और वो इसे आयन की कमी के रूप में देखते हैं। आयन रक्त में पाए जाने वाला एक प्रमुख एलिमेंट है जो शाकाहारी भोजन में कम पाया जाता है, ठीक है, ये सही है। लेकिन जब तक आप संतुलित भोजन खा रहे हैं आपको पर्याप्त आयन मिलता रहेगा, लेकिन अगर आपके शरीर में इनफ आयन नहीं है तो आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको रक्तदान नहीं करने दिया जाता है, ठीक है। तो ये मिथ थी। और कई देशों में दान करने आए लोगों के रक्त में हीमोग्लोबिन की भी जांच करते हैं। यदि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है तो व्यक्ति को रक्तदान करने के लिए अयोग्य माना जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा कई अन्य वजह भी शामिल है, जैसे अगर आप टैटू बनवाए हैं वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो ये बात तो एकदम सच है, जो लोग HIV, हेपेटाइटिस, सिफिलिस और कई अन्य बीमारियों के लिए पॉजिटिव पाए जाते हैं वे भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड डोनेशन करने से 14 दिन पहले आपका किसी भी तरह के इन्फेक्शन से मुक्त होना जरूरी है, और अगर आप कोई खास दवाइयां भी ले रहे हो तो ब्लड डोनेशन करने के 7 दिन पहले दवाइयों का जो कोर्स होती है उसे पूरा करना बेहद जरूरी है। वैसे तो दवाइयों से जुड़े नियम प्रत्येक देश पर निर्भर करते हैं, आप खुद पता लगा सकते हो। तो कहते हैं कि रक्तदान महादान, जो जरूरतमंदों को नया जीवन देता है। दुनिया में हर जगह लोग रक्तदान करते हैं, रक्तदाताओं का आभार जताना जो लोग बिना किसी पैसे या सेल्फिश इंटरेस्ट या सेल्फ इंटरेस्ट के बिना वॉलंटरी तौर पर अपना खून दान करते हैं, उन्हें धन्यवाद कहना और उनके इस जीवनदायी योगदान की सराहना करना बहुत बहुत जरूरी होती है। समझ गए आप ना? तो देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इस दिवस का 14 दिन को ही क्यों मनाया जाता है। तो ये दिवस एक ऑस्ट्रियन, नॉट ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट और फिजिशियन कार्ल लैंडस्टीना की याद में इसे मनाया जाता है, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी 1900s में और उन्हें नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन से भी सम्मानित की गई थी 1930 में। तो ये सभी थी बातें आपके लिए और ये थी ये पारिवारिक विषय में ब्लड डोनेशन के बारे में। आज इसके लिए मुख्य दिन है 14 तारीख जून, और आप चाहे तो इस पर अमल कर सकते हो और आप रक्तदान भी दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपने हेल्थ डिपार्टमेंट या अपने डॉक्टर से आप पूछताछ कर सकते हो।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business, built on trust.
2: देखिए, आपको एडवर्टाइज करानी है तो आप ज़रूर रेडियो ब्रिज़वानी को संपर्क कीजिए। ख़ास तौर से एंजेला जी को या जतीश पूरन जी को आप संपर्क कर सकते हैं और आपकी जो बिजनेस है उनको आगे बढ़ाने में बेशक आपकी मदद ये करें।
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: हाँ जी, हर रविवार को आप हमारे साथ जुड़ जाते हो रेडियो ब्रिज़वानी के माध्यम से, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ऐसे प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए जो आपके दिल को खुश करे।
4: Sending our top up to loved ones in Fiji is super easy. केवल अपने nearest डेयरी, सुपरमार्केट और पेट्रोल स्टेशन पहुंचिए और खरीदिए 10, 20, 30 या $50 टॉप अप। आप वेबसाइट www.digicelinternational.com विजिट भी कर सकते हैं। डिजिसेल टॉप अप अपने फैमिली को फिजी देने के लिए। पैसा भेजने के लिए our partner क्लिक एक्सप्रेस पिक इज द easiest वे टू सेंड मनी टू डिजिसेल Fiji. केवल आपको रजिस्टर होना है at www.clickexpresspic.com पर। Digicel, we are better together.
2: Of course, we are better together. आप रेडियो ब्रिज़वानी के साथ जुड़ जाइए एंड इससे अच्छी जोड़ी क्या होगी, ठीक है?
5: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
6: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा, वो क्या?
6: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
6: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: हाँ जी, कई नए और पुराने गीत हम आपके लिए लेकर आते हैं, और चलो आप ये सुनिए। देवानंद जी क्या कहते हैं किशोर।

0: जी, बहुत ही प्यारा सा ये नगमा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारे नगमे हैं हमारे पास, मगर समय की तो कमी है।
1: एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए।
0: हाँ जी, अब चलते हैं गजल की ओर, और गजल के आशिक बहुत होते हैं। तो जगजीत जी और चित्रा, जगजीत जी तो हमारे बीच नहीं है, मगर उनका ये गजल, मैं और मेरी तन्हाई एल्बम, 1980 की ये एल्बम।

हाँ जी, कितनी प्यारी, कितनी प्यारी गजल है ये। चित्रा जी और जगजीत ने भी उतनी ही मिठास भर दी है इस गजल में। और जैसे कि एक ऐसी शायरी आप कह सकते हो जिसे सुनने वाला भी एक मंत्र के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। बहुत ही प्यारे से ये गजल। तो किसी ने क्या खूब लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। सो ये थी गजल आपके लिए, बहुत ही प्यारे से गजल। और हाँ जी, जो शब्द मैंने आपको अभी बताई थी ना, मेरा, सो उसको मैं ख़त्म करती हूँ क्योंकि मेरे पास अब 10 ही मिनट बचे हुए हैं। तो मीरा को हिंदी में शीशा कहते हैं, ठीक है? शीशा, आप इसे दर्पण भी कह सकते हैं, आप इसे आईना भी कह सकते हैं। और ये बहुत ही, जो आईना होती है ये, अगर हम आईना के सामने खड़े होते हैं तो अपने आप को देखते हैं, एंड ये हमें, मीरा हमें बहुत कुछ बताती है हमारे बारे में। सो शी लुक्ड इन द मीरा, वो शीशे में देख रही थी, आप इसे सेंटेंस में बना सकते हो। और ही हंग अ मीरा ऑन द वॉल, उसने दीवार पर एक दर्पण लटकाया, ऐसे भी आप कह सकते हो। द लेक वॉज अ परफेक्ट मीरा, यानी कि झील एक आदर्श आईना थी। तो ऐसे बहुत से सेंटेंस आप बना सकते हो, मगर अभी तो मैं इसे यहीं छोड़ रही हूँ, हमारे पास समय कुछ कम ही लग रहा है। सो अब हम आपको लेकर चलते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा गीत, इस बार फिर किशोर दा की आवाज में। well, ये तो मैं नहीं आपको सुनाना चाहती हूँ। सो अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो नगमा, इसे आप सुनिए, होपफुली आई गेट द राइट वन। लगता है नहीं, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये ठीक लगता है, एंजॉय करिए। ये फिल्म पेइंग गेस्ट से ली गई, एसडी बर्मन ने म्यूजिक प्रदान की थी इस गीत के लिए।

0: वाला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: जी बहुत ही बढ़िया सा ये नगमा, एंड आई होप आपने पसंद की होगी। और अब चलते हैं एक और गीत आपके लिए, एंड इसे एंजॉय कीजिए आप।

अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, रुखसत ले रहे हैं। एक ही मिनट बचे हुए हैं हमारे पास और आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप खुश रहें और औरों को खुश रहने का मौका जरूर दीजिए। अगले सप्ताह एक बार फिर मिलेंगे, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, यही कहकर जा रही हूँ।

0: खुश रहे।
1: तो भाई कैसे गुजर रहे हैं वीकेंड्स? बढ़िया मजेदार। और ये वीकेंड्स और भी अच्छे गुजर सकते हैं भाई, अगर आपके पसंद के गाने आपको सुनने को मिल जाएं तो वीकेंड्स का मजा तो आ जाएगा ना। हाँ तो चलिए फिर आपकी पसंद के कुछ बेहतरीन गानों को आज फिर से आपको सुनवाते हैं फरमाइशी गीतों के साथ। तो आपको करना कुछ नहीं है ज्यादा, बस हमें लिखकर भेजना है अपनी पसंद का गाना और उसकी फिल्म का नाम, और बस वो गाना जो है वो हम आपके लिए प्ले कर देंगे। तो बस किसे डेडिकेट करना चाहते हैं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, हमें जल्दी से लिख भेजिए रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं फरमाइशी गीत इस अगले ट्रैक के साथ, और पूरे 2 घंटे रहेगी सताक्षी सफर में आपके साथ।

चलिए भाई, आज का पहला गाना यानी कि पहली रिक्वेस्ट हम किसके लेने जा रहे हैं, और ये हैं प्रांजल। और प्रांजल ने हमें लिख भेजा है ब्रिस्बेन से आज का पहला मेल। और प्रांजल का कहना है कि सताक्षी, एक लड़की को मैंने देखा था एक बार, और मैं बस कहीं के लिए निकला था और अचानक से वो दिखी और न जाने कहाँ गायब हो गई। उसके बाद एक दो बार उसे और देखा लेकिन कभी बात नहीं हो सकी। आज कम से कम ये तो जानता हूँ कि वो मेरे ही पड़ोस में रहती है, लेकिन किसी से उसका नाम पूछने की हिम्मत नहीं हुई। और मेरी सिचुएशन को ये गाना जो आज मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, ये पूरी तरह से फिट बैठता है इस सिचुएशन पे। और उम्मीद करता हूँ कि काश के वो भी ये शो सुन रही हो और वो मुझे बता पाए कि उसका नाम क्या है। तो फिल्म दिल जले से मुझे सुनवा दीजिए, किससे पूछूं उस लड़की का नाम। हाँ प्रांजल भाई, देखिए जब मोहब्बत की है, फर्स्ट साइट लव है आपका, तो सबसे पहली चीज तो भाई जरूरी नहीं है कि उधर से भी वही हो जो इधर से है, है ना, वो भी प्यार करती हो, जरूरी नहीं है। लेकिन आप फिर भी हिम्मत करके पूछना तो पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी, तो करिए। और बिल्कुल भाई, ये दिल को कब तक बहलाएंगे, इजहार मोहब्बत कर डालिए। और चलिए आपके नाम दिल जले फिल्म से कुमार सानू साहब की आवाज में प्ले करती हूँ ये गाना, कि किससे पूछूं उस लड़की का नाम। और मेरे साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

रिहायशी गीत। जी हाँ, इसी सफर को सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर। आपकी ताजा तरीन फरमाइशों को, आपके वीकेंड्स इस वक्त मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। एंड आई रियली होप कि आप भी बहुत मजे ले रहे होंगे आज, है ना। तो भाई, अगर आपने अभी तक हमें नहीं बताया है कि आपकी फरमाइश क्या है, कौन सा वो गाना है जो आप खुद सुनना चाहते हैं या किसी को सुनवाना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें बता सकते हैं हमारे रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज या फिर वेबसाइट पर। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ अभी सुनिए और मेरे साथ यूं ही सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

फरमाइश गीतों में इस वक्त जो आज मैं मिलने जा रही हूँ वो हैं शाश्वत, और आपने हमें लिखा है ब्रिस्बेन से। और शाश्वत का कहना है कि सताक्षी, मैं रिलेशनशिप में पिछले 4 सालों से हूँ और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, हमारे बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। बस आज उसी केमिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए वो गाना सुनना चाहता हूँ जो मोहब्बत की मुझे लगता है एक नई दास्तां बयां करता है। तो फूल और कांटे से प्लीज मेरे लिए प्ले कर दीजिए, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। बहुत खूबसूरत गाना शाश्वत। और आज जब लोग प्यार तोड़ने की बात करते हैं, आप धीरे धीरे प्यार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हाँ, आप मधु और अजय देवगन पर फिल्माया गया ये ट्रैक आपके लिए जरूर प्ले किया जाएगा। इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर।

0: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। OMSOG, caring with dignity.
2: रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी को सुन रहे हैं आप और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ फरमाइशी गीत। जी हाँ, फरमाइशी गीतों का ये वो सफर है जिसमें आपके साथ कुछ गहरी और दिल से जुड़ी बातें हम शेयर कर रहे हैं। फिलहाल एक और ट्रैक के साथ आगे लेकर चलती हूँ आपको। एंजॉय कीजिए एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्थानी।

फरमाइशी की तो मैं आइए देखते हैं कि हमारे पास हमारे साथ इनफैक्ट अगला मेल किसका है, कौन है वो जिन्होंने हमें लिखा है। और आप हैं रागिनी और आपका मेल मुझे मिला है मेलबर्न से। और रागिनी मुझे लगता है काफी सैड है दोस्तों, भाई उन्होंने गाना ही ऐसा पसंद किया, वैसे लिखा क्या है मेल से पता करते हैं कि कैसा मूड है। तो भाई आपने लिखा है कि कभी कभी सताक्षी ऐसा होता है कि आप किसी को बहुत शिद्दत से चाहते हैं लेकिन वो इंसान शायद आप उसके दिल में इतनी जगह नहीं बना पाते कि वो भी आपको उतनी ही शिद्दत से चाहे और प्यार करे। और ऐसा जब होता है तो मुझे एक ही गाना याद आता है, आज भी मैं ये गाना बहुत बहुत गुनगुनाती हूँ। सच बताऊं तो इस गाने के साथ एक सुकून मिलता है। तो साथ ही कोई भूला याद आया, फिल्म साथी से मेरे लिए ये गाना प्ले कर दीजिए। ऐसा होता है क्योंकि जब हम किसी को बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं, बहुत शिद्दत से चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो साथ जो है वो जिंदगी भर हमारे साथ रहे। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो तकलीफ तो होती है, है ना। फिल्म साथी से आप सुनना चाहती हैं कोई साथी भूला याद आया, और ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। और इस गाने को मैं भी आपके लिए जरूर प्ले करूंगी यहाँ पर, इंजॉय कीजिए। और बस इतना कहूंगी आपसे कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, स्ट्रांग रहिए और सुनते रहिए फरमाइशी गीत आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM पर।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003
1: के साथ रेडियो प्रस्वानी पर। और आपके लिए प्ले कर रही हूँ इस वक्त वो गाने जो आपको बेहद पसंद है और इस वक्त आपके दिलों में ये गाने उतर रहे हैं। ये गाने वो गाने हैं जिनकी रिक्वेस्ट आपने हम तक पहुंचाई है। तो अगली सॉन्ग रिक्वेस्ट लेने से पहले कहना चाहती हूँ आपसे कि अगर आप भी अपने सॉन्ग की रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो रेडियो ब्रिस्वानी के फेसबुक पेज या वेबसाइट पर लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट। और चलिए आगे लेकर चलती हूँ आपको एक और बेहतरीन गाने के साथ। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, मेरे साथ एंजॉय करते रहिए फरमाइशी गीत।

फरमाइशी गीतों में मेरे पास आज का अगला मेल पहुंच चुका है और ये है बिंदिया का मेल। और बिंदिया ने हमें लिखा है इंडिया से, आपने पुणे इंडिया से हमें मेल किया है और आपका कहना है कि सताक्षी 90s के गानों की एक अलग ही बात थी, एक अलग ही जज्बात हुआ करते थे। और 90s के बहुत सारे गाने तो हम रेगुलरली सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे गाने जो एक दफा हमें बहुत पसंद थे आज हम उन्हें भूल चुके हैं या ये कहूँ कम सुनते हैं। और ऐसा एक गाना जो है वो मैं सुनना चाहती हूँ फिल्म यारा दिलदारा से, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम। तो ये गाना अगर हो सके तो प्लीज प्ले कर दीजिए। भाई क्यों नहीं प्ले करेंगे, ये गाना 90s के बेहतरीन गानों में शुमार है बिंदिया। और लोग इस गाने को मैं तो कहूंगी कि आज भी सुनते हैं, लेकिन हाँ जिक्र जरा आज के जमाने में इस गाने का कम होता है। तो बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, यारा दिलदारा से ये गाना है आपके लिए। इंजॉय कीजिए और हमारे साथ सुनते रहिए फरमाइशी।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम

0: में उत्तम रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
0: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: आपकी कुछ खास फरमाइशों को इस वक्त मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। फरमाइशी गीतों का ये सफर है जिसके साथ आपके साथ कुछ बहुत ही गहरी और इंटरेस्टिंग सी बातें और इंटरेस्टिंग से गाने हमारे चल रहे हैं। तो चलिए इन गानों के साथ अपने सफर को जरा आगे लेकर चलते हैं। और आप भी अगर किसी के साथ अपने जज्बात गानों के जरिए शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए रेडियो ब्रिस्वानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर। और ये एक अगला ट्रैक है आपके लिए, इसे भी इंजॉय कीजिए और कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ सुनते रहिए।

सो फरमाइशी की तो मैं अभी जो मेल है मेरे पास वो है पुष्पेंद्र का, और आपने हमें लिख भेजा है डेल्टा बीसी से। और पुष्पेंद्र का कहना है कि सताक्षी प्यार क्या होता है, ये बेसिकली तब समझ आता है जब आप अपने प्यार से दूर होते हैं। और मुझे भी यही समझ में आ रहा है भाई, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उसे। और एक गाना जो अक्सर मैं उसके लिए गाया करता था और उसे बहुत पसंद भी था, मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, तो ये गाना अगर हो सके तो प्लीज प्ले कर दीजिए भाई पुष्पेंद्र। ये गाना है फिल्म बाहर आने तक का, और जरूर आपके लिए गाना प्ले किया जाएगा।

नमस्कार, आदाब। ढलती हुई शाम कुछ ख्याल ले आती है और बस उन्हीं ख्यालात के साथ रात गुजरती है। सामीन, जब भी आपका ख्याल आता है, मेरा दिल यही कहता है कि वो इत्र की शीशी बेवजह इतराती है खुद पर, वो इत्र की शीशी बेवजह इतराती है खुद पर, हम तो तुम्हारे ख्यालों से ही महक जाते हैं। आपसे मुलाकात का समय तय है और हाजिर है गजलों का कारवां लेकर आपका रेडियो हम सफर। निलय प्रोग्राम है कारवां गजल और आपने ट्यून इन किया है रेडियो ब्रिस्वानी। साज तैयार हैं, सुर सजे हुए हैं, तो आगाज करते हैं महफिल का। अदा देखो नकाबे चश्म वो कैसे उठाते हैं, अदा देखो नकाबे चश्म वो कैसे उठाते हैं, अभी तो पी नहीं फिर भी कदम क्यों डगमगाते हैं, जरा अंदाज तो देखो न है तलवार हाथों में, हमारा दिल ज़बह कर खून से मेहंदी रचाते हैं। हमें मंजूर है गर गैर से भी प्यार हो जाए, कम अज कम सीख जाएंगे कि दिल कैसे लगाते हैं। सुना है आज वो हमसे खफा है, बेरुखी भी है, नजर से नजर हर बार क्यों हमसे मिलाते हैं।

कुछ यूं लगता है तेरे साथ ही गुजारा वो भी, हमने जो वक्त तेरे साथ गुजारा ही नहीं। जब ये अशआर पढ़ते हैं तो इन्हीं के साथ गालिब का अंदाज भी याद आ जाता है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। कहने को बात एक सी होती है, अंदाज बदल जाते हैं। मुझे लगता है जिंदगी हर किसी को दिल की मोहब्बत से नवाजती है, आपको भी नवाजा होगा। मोहब्बत ख्यालों को खूबसूरत बनाती है, आपको है कि नहीं? वो नजर देती है जिससे वादियां खूबसूरत लगने लगती हैं। हर वो बात जो दिल भर से जुड़ी हो वो दिलकश लगने लगती है। निलय के साथ हैं आप कारवाएं गजल की शमाए रोशनी से, दिल आबाद रखिएगा और सुनते रहेगा कारवाएं गजल। अजब हाल अपना होता जो विसाले यार होता, कभी जान सदके होती कभी दिल निसार होता। न मजा है दुश्मनी में न लुत्फ दोस्ती में, कोई गैर गैर होता कोई यार यार होता। ये मजा था दिल लगी का कि बराबर आग लगती, ये मजा था दिल लगी का कि बराबर आग लगती। न तुम्हें करार होता न हमें करार होता, तेरे वादे पे सितमगर अभी और सब्र करते, अगर अपनी जिंदगी का हमें एतबार होता।

नमस्कार आदाब, एक बार फिर से सलाम पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। मैं हूँ आपका रेडियो हम सफर, निलय है मेरा नाम। दिल की बात को जाहिर करना चाहिए कि नहीं, इस बात को लेकर लोगों में बड़ी कशमकश होती है। दिल की बात कही नहीं जाती एक अजीब से डर की वजह से कि कहीं दिल की मोहब्बत को कोई ठुकरा ना दे, ना कह दे। पर हुजूर, इतना आसान नहीं होता अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखना, है ना। दूर भले वो हो जाए लेकिन दिल से उसे निकाल पाना आई थिंक नामुमकिन ही होता है। इसी ख्याल के साथ निदा फाजली साहब की बात एकदम सही लगती है कि तुमसे छूटकर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुमसे छूटकर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुमको ही याद किया तुमको भुलाने के लिए। अपना सोचा हुआ नहीं होता, वरना होने को क्या नहीं होता। उसकी आदत फकीर जैसी है, कुछ भी कह लो खफा नहीं होता। नमसलते यूं संग दिल इसको, दिल अगर फूल सा नहीं होता। याद आते न शबनमी लम्हे, जख्म कोई हरा नहीं होता। ख्वाब में होती है फकत मंजिल, पर कोई रास्ता नहीं होता। इश्क बस एक बार होता है, फिर कभी हौसला नहीं होता। हद से गुजरे हजार बार भले, हद से गुजरे हजार बार भले, दर्द फिर भी दवा नहीं होता। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर गजलों का कारवां, कारवां गजल। इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं इन नगमों और गजलों के साथ।

अजब दिन थे कि इन आंखों में कोई ख्वाब रहता था, कभी हासिल हमें खसखाना और बर्फाब रहता था। उभरना डूबना अब कश्तियों का हम कहां देखें, वो दरिया क्या हुआ जिसमें सदा गिरदाब रहता था। वो सूरज सो गया है बर्फजारों में कहीं जाकर, धड़कता रात दिन जिससे दिले बेताब रहता था। निलय के साथ हैं आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। फासला रख के भी क्या हासिल हुआ, आज भी उसी का कहलाता हूं मैं। जब कोई किसी से दिल से मोहब्बत करता है ना, तो जैसे दो रूह एक हो जाती हैं। रस्म उल्फत निभाना इतना भी आसान नहीं होता, जमाने की बनाई दीवारों को तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता। जनाब मोहब्बत का एक और नाम है दीवानगी, जो इस कदर सर चढ़कर बोलती है कि उन्हीं लम्हों को ताजा किया करता है दिल जो साथ गुजारे थे। आज भी वही पहचान सही लगती है जो उसके नाम के साथ जुड़ी हो। हमारी पहचान है मोहब्बत, जो दिल से दिल को जोड़कर रखती है। जिसे पढ़ते तो याद आता था तेरा फूल सा चेहरा, जिसे पढ़ते तो याद आता था तेरा फूल सा चेहरा, हमारी सब किताबों में एक ऐसा बाब रहता था। सुहाने मौसमों में उसकी तुगयानी कयामत थी, सुहाने मौसमों में उसकी तुगयानी कयामत थी, जो दरिया गर्मियों की धूप में पायाब रहता था। मुफलिसी में ख्याल अब हमसे कोई वादा वफा नहीं होता।

मोहब्बत और दोस्ती कहीं ना कहीं एक ही राह की ओर चलने वाले दो मुसाफिरों की तरह होते हैं। वो मुसाफिर जो साथ होते हुए भी कई बार नजरें चुरा लेते हैं। दोस्त अगर बरसों बाद मिले तो नजरें मिलाकर दिल का हाल बयां कर देते हैं, वहीं मोहब्बत अगर बरसों बाद मिले तो नजरें चुराकर उसके खो जाने का एहसास करा देती है। इसीलिए हुजूर निले आपसे कह रहा है कि दोस्त हो या मोहब्बत, दिल में संभाल कर रखिए, नजरें चुराकर नहीं नजरें मिलाकर मिलिएगा। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जरूरी तो नहीं कि शायरी वो ही करे जो इश्क में हो, जिंदगी भी कुछ जख्म बेमिसाल दिया करती है। सुधरे कारवाई गजल रेडियो सफर निलय के साथ, दिल पर हाथ रखिए और अपनी मुस्कान को बरकरार रखिए। पेश खिदमत है अगली गजल आपके लिए। अजब एक शोर सा बरपा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं, है कुछ ऐसा कि जैसे ये सब कुछ अब से पहले भी हो चुका है कहीं, जो यहां से कहीं न जाता था वो यहां से चला गया है कहीं, तुझको क्या हो गया कि चीजों को कहीं रखता है ढूंढता है कहीं।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660.
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.

वेलकम बैक ख्वातीन और हजरात, एक ख्याल आपसे बांटना चाहूंगा कि दुनिया की इस भीड़ में अपनी पहचान बहुत जरूरी है भाई। छोटी ही हो अपनी पहचान, लेकिन वो होती अपनी ही है। किसी के साए में उम्र गुजार देना आसान जरूर होता है, हर शख्स को कोशिश करना चाहिए कि दुनिया की भीड़ में उसका भी अपना एक नाम हो। कुछ लोगों के ही सही, पर दिलों पर उसका भी नाम हो। और जब कोशिशों के बाद अपनी पहचान बन जाती है, तब वो खुशी, वो एहसास, वो जज्बा, वो सब कुछ मिल जाता है जिसे बयां कर पाना भी मुश्किल होता है। पर जनाब संभल कर, क्योंकि हम कई बार नाम को बड़ा करने के लिए जब सहारे की तलाश करते हैं ना, तब इस बात पर गौर जरूर फरमाइएगा, क्योंकि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया से समंदर मिले दरिया नहीं रहता। सुनते रहिए रेडियो बिस्वानी पर कारवाई गजल निले के साथ। आपके इस शहर में गुजारा नहीं, अजनबी को कहीं पर सहारा नहीं। बह गया मैं अगर तो बुरा क्या हुआ, खींच लेती किसे तेज धारा नहीं। आरजू में जन्म भर खड़ा मैं रहा, आपने ही कभी तो पुकारा नहीं। हाथ मैंने बढ़ाया किया बारहा, हाथ मैंने बढ़ाया किया बारहा, आपको साथ मेरा गवारा नहीं। कभी

0: वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि आप जो भी काम कर लीजिए उनको आप खुश नहीं कर सकते। नुक्स नुक्स निकालते हैं वो, और नुक्स निकालना उनकी आदत में शुमार होता है। ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेहतर होता है भाई। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप जान से भी अजीज समझते हैं, पर वक्त बदलते ही वो भी ऐसे बदल जाते हैं मानो कभी हाथ में हाथ था ही नहीं। ऐसे मिलते हैं जैसे कभी हम सफर थे ही नहीं, कभी हम भी इस कदर करीब थे, दिलो जान से बढ़कर अजीज थे, मगर आज ऐसे मिला है वो कभी पहले जैसे मिला ना हो। सारी उम्मीदें, वादे, वफा जैसे सिर्फ नाम के थे। कभी तो चौंक के देखे वो हमारी तरफ, किसी की आंख में हमें भी इंतजार तो दिखे। तभी एक और दिल ये भी कहता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अजीब बात है, खुद से नजर चुराता है मगर वो दूसरों को आईना दिखाता है। जो कल तलक मेरी उंगली पकड़ के चलता था वो शख्स आज मुझे रास्ता दिखाता है। उसे खबर है कि बन जाएगी मेरी जां पर, मगर वो फिर भी मेरा जर्फ आजमाता है। बहुत गुरूर न कर अपनी खुशनसीबी पर, बहुत गुरूर न कर अपनी खुशनसीबी पर, नसीब आज हंसाता है कल रुलाता।

जरा सी बात का मलाल करते हो, शिकायतें भी वही हैं जहां मोहब्बत है। कितनी सही बात है ना ये। बाकी जहां मोहब्बत होती है वहीं उम्मीद भी होती है, और इसीलिए शिकायतें भी होंगी ही। लेकिन हुजूर, ज्यादा उम्मीदी भी बड़ी गलत है, क्योंकि इससे रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। जितनी आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे उतने ही नुकसान में रहेंगे। कई बार बात को रखने के लिए यूं ही हाँ कह देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे। लेकिन सोचिए, क्या ये सही है? बनावटी रिश्तों को बनाए रखना ना उम्मीदी को बुलावा देने जैसा है। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। आपका और मेरा रिश्ता ना झूठे वादे पर टिका है और ना किसी उम्मीद पर। आपका और मेरा दिल से दिल का नाता यूं ही नहीं बना है। इसी एतमाद और यकीन के साथ अगली गजल आपके लिए पेश कर रहा हूं, सुनिए। अदाए हैरते आईना गर भी रखते हैं, हमें न छेड़ के अब तक नजर भी रखते हैं। न गिर्दो पेश से इस दर्जा बेनियाज गुजर, जो बेखबर से हैं सबकी खबर भी रखते हैं। कफस को खोल मगर इतना सोच ले सयाद, बहुत असीर तेरे बालों पर भी रखते हैं। फरिश्ता है तो तकद्दस तुझे मुबारक हो, हम आदमी हैं तो ऐबो हुनर भी रखते हैं।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं कारवां गजल निलय के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर। आपने कभी सोचा है कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं उन हर्फों का जरिया बनाकर शायर कितने ही सारे ख्याल हमारे दिलो दिमाग में उतार देता है। शब्द कहिए या कई बार रंग कहिए, सब जैसे बोलते हैं हमसे, कुछ न कुछ कहना चाहते हो। बस उनकी भाषा समझनी जरूरी है, उनके अंदाज को अपनाना जरूरी है। लेकर चले थे कारवां कुछ जज्बातों का, लेकर चले थे कारवां कुछ जज्बातों का, बस कुछ देर और ठहर कर उठ जाना है। मैं निलय हूं, थोड़ी देर और आपके साथ। आप सुन रहे रेडियो ब्रिस्वानी पर कारवां गजल, सुनते रहिए। अपनी आंखों को अकीदत से लगा के रख ली, तेरी दहलीज की मिट्टी थी उठा के रख ली, तुझको तकते ही रहे रात बहुत देर तलक, चांद की ताक में तस्वीर सजा के रख ली, दिल सी नौखेज कली तेरी मोहब्बत के लिए, सींच के जज्बों से पहलू में खिला के रख ली, इस नए साल के स्वागत के लिए पहले से हमने पोशाक उदासी की सिला के रख ली, दम उलझता था शबे तीरा का तारीखी से, इसलिए चांद की कंदील जला के रख ली।

जब दो लोग प्यार में एक साथ रहते हैं तो आदत पड़ जाती है एक दूसरे की। वक्त आने पर ना आदत छूटती है और न प्यार। वेलकम बैक, मैं हूं नीले आपके साथ और आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। प्यार भी तो आदत की तरह होता है, कुछ रिश्ते भी तो आदत बन जाते हैं, ऐसी आदत जिनको बदल पाना नामुमकिन सा हो जाता है। ना कोई छोड़ रहा है ना कोई खींचता है, मैं अपने आप बहे जाता हूं नदी की तरह, न डूबता हूं न रुकता हूं न सूखता हूं, उस एक शख्स को तलाशते हुए, उस आदत को संभाले हुए एक उम्र सी गुजर जाती है, रेत पर उसके पैरों की मोहरों को तकते हुए एक उम्र सी गुजर जाती है। चलिए सुनते रहिए कारवाई गजल, इस महफिल को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त बस हो ही चला है, आप तो बस बने रहिएगा हमारे साथ। अजब मौसम है, मेरे हर कदम पे फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है, मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है, हर आंसू में कोई तस्वीर अक्सर झिलमिलाती है, हर आंसू में कोई तस्वीर अक्सर झिलमिलाती है, तुम्हें आंखें बताएंगी दिलों में कौन जलता है, मोहब्बत गम की बारिश है जमीन सरसब्ज होती है, मोहब्बत गम की बारिश है जमीन सरसब्ज होती है, बहुत से फूल खिलते हैं जहां बाद

कहते हैं ना कि वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, वक्त की बात माननी पड़ती है भाई। और ये दस्तूर है कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई है, लेकिन इस जुदाई में भी साथ रहेगी आपकी यादों की खुशबू। जो वक्त आपने मेरे साथ गुजारा, मैंने जो आपके साथ गुजारा है, उसे याद करते करते हम अगले हफ्ते फिर मिलने आ जाएंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद कर लिया कीजिएगा, और हाँ, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखिएगा। सुनते रहिएगा रेडियो बृजवाणी। इन्हीं बातों के साथ गजलों का एक कारवां अपनी मंजिल तक आ पहुंचा, तो आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगले संडे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। जाते जाते कुछ कह देता हूँ आपके लिए, अपनी जुल्फों को सितारों के हवाले कर दो, शहरे गुल बादा गुसारों के हवाले कर दो, तलखिए होश हो या मस्तिए इदरा के जुनू, तलखिए होश हो या मस्तिए इदरा के जुनू, आज हर चीज बहारों के हवाले कर दो, मुझको यारों न करो रहनुमाओं के सुपुर्द, मुझको तुम रह गुजारों के हवाले कर दो, जागने वाले का तूफान से कर दो रिश्ता, जागने वालों का तूफान से कर दो रिश्ता, सोने वालों को किनारों के हवाले कर दो। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज, नमस्कार, टेक केयर।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644 35 पर। याद रहे 04006444 35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।

से जो पर सो कर झूठे को आराम न आए, लेकिन सत्य को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हाथ दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660.
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: Maria, suco, suco!
1: Ai, ai, ai, करूं मैं क्या सुकू सुकू।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: Maria, suco, suco!
1: Ai, ai, ai, करूं मैं क्या, suco, suco! Ai, ai.

पर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशन एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट वोलन गैबा ओपन डेली फ्रॉम 9 AM टेलीफोन रानी क्रिएशन ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना
2: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
1: ऐसा क्या खास है वहाँ
2: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम्ब चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
1: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818

क्योंकि वीरों के भी शिरोमणि सरदार खड़े थे, गुरु द्रोण दादा भीष्म कृपाचार्य खड़े थे, लड़ने के लिए सब कोई तैयार खड़े थे, पर रणभूमि में तो अपने परिवार खड़े थे। इन सब को देख अर्जुन का दिल दहल गया, फिर हाय उसके मुंह से उस दम निकल गया, इन गुरुजनों पे कैसे मैं वार करूंगा, किस किस का समर भूमि में संहार करूंगा, कांधे से तीर तरकश गांडीव छोड़कर, कहने लगा मोहन से वो हाथ जोड़कर, प्रभु ये राजपाट वैभव मुझको ना चाहिए, इस कुल कलंक से प्रभु मुझको बचाइए, ये जर जमीन मुझको सुवर्ण ना चाहिए, जो कुल का नाश

जाओगे तुम जो समर भूमि से, सारी दुनिया हंसेगी तेरे नाम पर। लौट जाओगे घर तुम समर भूमि से, सारी दुनिया

वीर माता से पाया है तुमने जन्म, तू उसी माता कुंती का रख ले भरम। अरे वीर माता से पाया है तुमने जन्म, तू उसी माता कुंती का रख

जिसको कहता है तू मेरा परिवार है, वो सभी तुमसे लड़ने को तैयार है। जिसको कहता है, अरे जिसको कहता है तू मेरा परिवार है, वो सभी

जग में सम्राट कहलाएगा, मर गया रण में तो स्वर्ग में जाएगा। जीत कर जग में तू सम्राट कहलाएगा और मर गया रण में तो स्वर्ग में जाएगा।

तक जब तक हूँ मैं तू हार सकता नहीं, कोई रण में तुम्हें मार सकता नहीं। साथ जब तक हूँ मैं तेरे तू हार सकता नहीं, और कोई रण में

कर कर्म शर्मा ही प्रधान है। अर्जुन कर्म कर कर्म शर्मा ही प्रधान है, कर्म ही लक्ष्मी और कर्ण भगवान है। कर्म कर कर्म शर्मा ही प्रधान है, कर्म ही लक्ष्मी और कर्म भगवान है, और कर्म ही

जीवन बहुत अनमोल है ये जीवन, और इस जीवन की सच्चाई को ढूंढने में, यानी हम क्या हैं, क्यों हैं और कहां से आए हैं, ये जानने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम इस सफर में, जीवन आधार में, अपनी जिंदगी के पर्पस को ढूंढने की ही कोशिश कर रहे हैं, शायद मिल जाए हमें। और ये पर्पस जो है, ये किसी जाति धर्म में नहीं बंधता, ये पर्पस जीवन का पर्पस कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, ये एक ऐसा पर्पस है जो हर मनुष्य के मन में है, ये एक ऐसा सवाल है जो हर मनुष्य के मन में है, अगर वो अपनी खोज में है तो। तो अगर आप भी अपनी खोज में निकल पड़े हैं तो बस हमें सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ जानने और समझने को आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ, और जीवन आधार का ये सफर इस अगले गीत के साथ आगे बढ़ेगा। सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी।

एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर सुबह के हमारे आत्मा को जगाते और मन को शुद्ध करते सफर जीवन आधार में, और इस सफर में आपका साथ कुछ ऐसे गानों के साथ आज मैं दे रही हूँ जो गाने मन को, तन को और बुद्धि को भी शुद्ध करते हैं। आपको किसी जाति या धर्म से नहीं जोड़ते, आपको इंसानियत से जोड़ते हैं और इंसान बनाते हैं। आपको जीने की सही वजह बताते हैं और जीने की राह दिखाते हैं। अभी एक ऐसे ही गीत के साथ बढ़ेंगे हमारे जीवन आधार के सफर में आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और रहिए सताक्षी के साथ।

अक्सर श्रोताओं, आप कदम उठाने से डरते हैं, एक्शन लेने से डरते हैं, यानी क्या करें क्या ना करें ये सोचकर मन अक्सर घबरा जाता है। पता नहीं आप जो कर रहे हैं उसमें वो ऊपर वाला आपका साथ देगा या नहीं, पता नहीं आपने जो चाहा है वो आपको मिलेगा नहीं, या आपने सही चाहा है या गलत चाहा है। अक्सर मन इस बात के बीच में विचलित होता रहता है। लेकिन अगर एक बार ठान लिया है कि ये करना ही करना है, अगर एक बार मन ने तय कर लिया है कि ये राह अपनानी ही अपनानी है, तो भला मन को विचलित क्यों होने देना। फिर तो जो ठान लिया सो ठान लिया, जब कदम उठा लिया तो रास्ते की परवाह क्यों करनी। फिर तो आपका जो पैशन है, आपकी जो चाहत है, वो आपको आपके लक्ष्य तक ले ही जाएगी, है ना। तो चलिए इसी बात पर आपके लक्ष्य के नाम सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर जीवन आधार।

जीवन आधार। जी हाँ श्रोताओं, यही सफर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ। जीवन आधार हमारा वो सफर है जहाँ पर आप जीने की सही वजह ढूंढ पाते हैं, अपने जीवन का डायरेक्शन ढूंढ पाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज हमें परेशान करती है वो ये कि हम इस पृथ्वी पे आखिर हैं क्यों, यानी हम क्यों हैं यहाँ, हमें क्या करना है। तो बस उसी जीवन को ढूंढने की हमें कोशिश करते हैं जीवन आधार में, और ऐसी ही कोशिश आज एक बार फिर से हम यहाँ पर कर रहे हैं। आइए भी बढ़ते हैं आगे इसी सफर में इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

भाग्य। कहते हैं जो भाग्य में एक दफा लिख जाए फिर वो कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपकी प्रार्थनाओं में वो शक्ति है जो शायद भाग्य का लिखा भी बदल सकती है। यूं ही नहीं कहते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले उस शक्ति का, उस ऊपर वाले का, उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो इस सृष्टि को चला रहा है। आप किसी भी पद पर हों लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि कोई है जो इस सृष्टि का नायक है और हम सबकी बागडोर उसने अपने हाथ में थाम रखी है और वही भाग्य का रचयिता भी है। तो अगर वो आपसे प्रसन्न है तो भाग्य लिखा हुआ बदल भी सकता है। बस उस पर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो आपका भाग्य बदल सकता है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक वो आपको मिलेगा नहीं। और एक बार वो आपको मिल गया फिर आपको वो भी मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा ही नहीं। सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी, आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ जीवन आधार।

0: तो श्रोताओं, ये था जीवन का एक और सफर रेडियो प्रसारणी 1701 AM पर जीवन आधार। इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे थे। कल फिर से इसी सफर में आपसे फिर से मिलूंगी जीवन की कुछ बातों और जिंदगी की कुछ गहरी और बहुत गहरी सच्चाइयों को लेकर। लेकिन अब आज के सफर से इजाजत चाहती हूँ और इस वादे के साथ कि कल लौटूंगी और फिर से जीवन आधार में हम अपनी ही जिंदगी को खोजने का प्रयास करेंगे। आज के सफर से अब दीजिए विदा। नमस्कार।
1: इतना तो करना स्वामी,

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: नमस्कार ब्रिस्बेन सुप्रभ।

हाँ तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी। नए हफ्ते की नई सुबह यानी कि आज है मंडे और उस मंडे में इस प्यारे से सोमवार में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी सोच के साथ इस सुबह की। जो लोग हर सुबह शुक्रिया कहकर उठते हैं उनकी जिंदगी में शिकायतें कम और खुशियां ज्यादा होती है। जी हाँ, इसीलिए हर दिन को हर सुबह हर घंटे शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। तो आइए जी, इसी मीठी मीठी बातों के साथ जाने का सफर प्रोग्राम शुरू होता है इन गीतों के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी, क्योंकि आज है बहुत कुछ खास। सुनते रहिए, बने रहिए रेडियो ब्रिसवानी में।

तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में आगे और करते हैं शुरुआत कुछ खबरों के साथ। फिलीपींस के मिंदानाओ रीजन में 7.8 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली भूकंप आया है। इसके बाद सुनामी अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं और कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं अगला गीत।

इसी के साथ आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर भूटान में 5.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप महसूस किया गया है, जिसके झटके जो हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों तक पहुंच गए। अच्छी बात ये है कि अब तक किसी बड़े जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट के पास भी भूकंप हलचल जो है रिकॉर्ड की गई है, एक्सपर्ट्स लगातार मॉनिटरिंग जो है वो कर रहे हैं। आइए इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत, सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी।

हां जी, तो इस गीत के साथ एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं दुनिया में हर साल लगभग 5 लाख अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ करीब 1 लाख ही लोग जो है महसूस कर पाते हैं। जी हाँ, तो आइए दोस्तों, हर सुबह एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आती है और आज की ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि आपको एक और दिन मिला है अपने सपनों को पूरा करने का, तो उस दिन को आप गवाए ना, अपने जितने भी सपने हैं उसका रिकॉर्ड जरूर बनाएं और उसे पूरा करने की जरूर कोशिश करें। तो आइए फिर चलते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे इस गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी।

हाँ जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। वैसे तो शाहरुख खान के सभी फैन हैं, लेकिन दोस्तों शाहरुख खान को किंग खान जो टाइटल मिला था, लोग बोलते हैं उनको अवार्ड शो से मिला, लेकिन जी नहीं, ये जो किंग खान टाइटल है वो फैंस ने उन्हें दिया था, किसी अवार्ड शो ने नहीं। जी हाँ, तो दोस्तों 90s के गाने आज भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर मिलियंस में सुने जाते हैं, और इसीलिए कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। और इसीलिए आपके दोस्त और होस्ट आरजे चानी जान आप सभी को पुराने गीत जरूर सुनाती है सुबह, ताकि पुरानी ताजा यादें जो है हमारी वो बिल्कुल से ताजा दोबारा हो जाए, ताकि हम एक प्यारी से सुबह की शुरुआत बहुत ही प्यारे गीत और बहुत ही प्यारी यादों के साथ करें। तो इसी के साथ आइए 90s का ही कुछ गीत को हम सुनते हैं और अपने इस सफर को बेहतरीन बनाते हैं। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

0: सुनो आदमी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुमारे,
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: हाँ जी, तो फिर हाथ में है चाय या कॉफी। वैसे आप सभी से मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आपको पता है ज्यादातर लोग जो है वो कॉफी का इंटेक करते हैं, क्योंकि कॉफी की खुशबू सिर्फ मूड ही नहीं दोस्तों, हमारी जितने भी कंसंट्रेशन है उसको भी इम्प्रूव करती है, इसीलिए लोग कॉफी का इंटेक ज्यादा लेते हैं। वैसे मैं आप सभी को बताऊं दोस्तों कि मंडे को ना हमेशा हमें पनिशमेंट नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो दिन होता है जो दोस्तों जो हमें पूरा हफ्ते को बेहतर बनाने का मौका देता है। इसीलिए दोस्तों आज किसी भी एक इंसान को जरूर कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, हो सकता है आपकी एक बात उसका पूरा दिन बना दे। आप वैसे मुझे भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, आई एम ऑलवेज रेडी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।
1: अरे अरे ए, ए,

हाँ जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। वैसे दोस्तों, अलार्म ने सुबह सुबह आपको उठाया जरूर होगा, लेकिन रेडियो ब्रिस्वानी आप सभी को जरूर जगाता है, क्योंकि वो लेकर आता है आप सभी के लिए बहुत सारी अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, तो फिर जागना तो बनता है और सुनना भी बनता है। तो दोस्तों, इसी पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब के साथ मैं यानी आपकी दोस्त चांदनी लेती हूँ इजाजत। अगले दिन फिर मिलेंगे आप सभी के साथ और लेकर आएंगे और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स, म्यूजिक और मस्ती। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। टेक केयर, बाय बाय।

जीनियस लोग ही पैदा करें ज्यादा बच्चे, स्पर्म डोनेट को लेकर गंभीर हुए एलन मस्क। दुनिया के पहले ट्रिलिनियर और स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रणेता एलन मस्क इन दिनों पैसे से ज्यादा आबादी बढ़ाने को लेकर चर्चा में हैं। मस्क का मानना है कि दुनिया के समझदार लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए और इसके लिए वो स्पर्म डोनेशन को एक बेहतर जरिया मानते हैं। हालांकि उनकी इस

मस्कियन सोच के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन देशों के कड़े कानून है जहां स्पर्म डोनेटर की पहचान गुप्त रखी जाती है। एंथ्रोपिक के फेवर 5 और माइथोस 5 को वापस लेने का असर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक के अत्याधुनिक एआई मॉडल का उपयोग अब विदेशी नहीं कर सकेंगे। एंथ्रोपिक ने अमेरिकी सरकार के निर्देश के बाद दुनिया भर के सभी विदेशी ग्राहकों के लिए अत्याधुनिक एआई मॉडल फेबल 5 और माइथोस 5 के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। एथोपिक ने बताया कि अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कंपनी को आदेश दिया है कि वो फेवल 5 और माइथोस 5 का उपयोग किसी विदेशी को ना करने दे। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। ओमान तट के पास डूबा विराट 1 जहाज, अमेरिकी नौसेना ने बचाई 14 भारतीय नाविकों की जान। खाड़ी इलाके में बढ़ते तनाव के बीच मस्कट में भारतीय दूतावास ने कहा कि उसे ओमान के तट के पास 14 भारतीय क्रू सदस्यों वाले एक जहाज से जुड़ी घटना के बारे में पता चला। भारतीय मिशन ने घटना की प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं साझा की है। ओमान में टैंकर पर भारतीय नाविक निशांत की मौत, बर्फ की कमी से शव सड़ने का डर। मस्कट में भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के डुकम पोर्ट पर खड़े जहाज एमटी सेलेस्टियल पर एक भारतीय नागरिक की मेडिकल दिक्कतों के कारण मौत हो गई। दूतावास ने मृतक की पहचान निशात के तौर पर की है। दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, मृतक के शव को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि उनका शव अभी डुकम पोर्ट पर मौजूद जहाज पर ही है। भारतीय नाविकों की मौत पर अमेरिका ने नहीं जताया खेद, तो शशि थरूर भड़के, कहा ये कैसा असंवेदनशील दोस्त। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ओमान तट पर अमेरिकी नौसेना के हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत पर अमेरिका के अरियल रवैये की कड़ी आलोचना की है। अमेरिका द्वारा इस घटना पर कोई भी खेद या संवेदना व्यक्त न करने पर गहरा सदमा जताते हुए थरूर ने उसे एक असंवेदनशील मित्र करार दिया, क्योंकि रणनीतिक साझेदार होने के बावजूद उसके निर्दोष भारतीयों की मौत पर खेद व्यक्त करने से इनकार कर दिया गया। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता।
1: सुबह का पहला कॉफी 3 हफ्ते के बाद।
2: गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते।
1: गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार दोस्तों सभी का। अमिता, वेलकम बैक।
2: थैंक यू।
1: I bet you've forgotten a lot of things in 3 weeks, haven't you?
2: Yes, like passwords.
1: तो अभी तो छुट्टी से आ गई है दोस्तों, और मेरा भी काम थोड़ा इजी हो जाएगा अब। और चलो, अब उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे हैं, आप लोग सर्वाइव कर चुके हैं, क्या बोलते हैं, अपना जो वीकेंड, ठीक है। तो दोस्तों, पहले मैं कह दूं आप सभी से कि हमारा जो एप्स है अभी अच्छी तरह से चल नहीं रहा है। अगर आपका चल रहा है, अगर आप iOS अपडेट करेंगे तो ये शायद बंद हो जाएगा, लेकिन फिकर मत करें, और भी जरिया है जहां से आप सुन सकते हैं जगह जगह से, जैसे क्या चूना एक है और बहुत से दोस्तों,
2: ट्यून इन गार्डन रेडियो
1: सबसे सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नया ऐप इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। वो लगता है से दैसे अबाउट 20 to 30 डेज लगता है।
2: आई
1: डोंट नो व्हाई इट टेक्स सो लॉन्ग फॉर देम टू डू द स्क्रिप्टिंग एंड ऑल दैट, बट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि यार हमारा ब्रिस्बानी नहीं आता है, तो आप उनसे कहना कि चले जाइए ट्यूनिन और कोई आज दूसरे जगह पर, वहां से सुनने लगे आप। बस एक दो हफ्ते की बात है, 2-3 हफ्ते की ना। तो चले दोस्तों, कहा सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो वेदर क्या कह रहा है ब्रिस्बेन के लिए। आज के लिए कहा गया है कि पार्टली क्लाउडी रहेगा और 15 and 23 रहेगा दोस्तों, और कल के लिए कहा गया शावर और 15 and 23 रहेगा। बुधवार के लिए 14 and 23 रहेगा, पार्टली क्लाउडी। थर्सडे को पार्टली क्लाउडी, नो रेन, 13 and 23। फ्राइडे को पार्टली क्लाउडी, शायद 1 millimeter रेन हो सकता है, 14 and 24 degrees रहेगा। और आने वाले वीकेंड के लिए शावर और 2 ऑन सैटरडे, 15 and 25, कोई खास बहुत नहीं होगा शायद। और संडे को शावर और 2, 16 to 24, 3 millimeters कहा गया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ओ रास्ते पर क्या हो रहा है। तो खोया हूं। अच्छा, 10 मिनट पहले आया था बवन ब्रिज रोड जो है हेस्टन हैजार्ड जो था, ये क्लियर हो गया है दोस्तों। और इप्स्विच मोटरवे व्हीकल स्टेशनरी व्हीकल नो ब्लॉकेज इज बाउंड टुवर्ड्स ब्रिस्बेन। और देखिये दोस्तों, ठंड का मौसम है तो अपना गाड़ी जो है टायर प्रेशर से चेक कर ले, अपना इंजन ऑयल चेंज कर ले, सब कुछ निक में रखना चाहिए। अगर कुछ हो गया, रास्ते में खड़े हो जाएंगे आप, तो फिर कहेंगे यार क्यों नहीं मैंने जतीश का बात सुना था, क्यों नहीं अपना मोटर को राइड किया, मुझे भी करना है। चलिए फिजी न्यूज की ओर चलते हैं दोस्तों। फिजी में इकोनॉमी के लेकर काफी चर्चा हो रही है इस समय। एक्सपर्ट्स का कहना है कि महंगाई, बढ़ते हुए फ्यूल प्राइजेस और गवर्नमेंट डेट इकोनॉमी पर प्रेशर डाल रही है। रिजर्व बैंक ने 2026 ग्रोथ फोरकास्ट को भी कम करके लगभग 1.5% कर दिया है, ठीक है। नेशनल बजट 26 जून को पेश किया जाएगा और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करने के लिए कुछ राहत मिल सकती है। और सोशल वेलफेयर ग्रुप्स ने गवर्नमेंट से अपील की है कि संभावित एल नीनो के जो प्रभाव को देखते हुए जो वल्नरेबल फैमिलीज के लिए ज्यादा सपोर्ट रखा जाएगा, और कुछ एरियाज में हैवी रेन और फ्लडिंग कंसर्न भी बने हुए हैं दोस्तों। और मैरीटाइम सेफ्टी, रिसेंट बोटिंग इंसिडेंट के बाद मैरीटाइम सेफ्टी पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। एडिटोरियल्स और सेफ्टी एजेंसीज ज्यादा इंस्पेक्शंस और स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट की मांग कर रही हैं। ताकि जान और माल का नुकसान रोका जा सके। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक अच्छी खबर टूरिज्म सेक्टर से, फिजी एयरवेज ने गोल्ड कोस्ट और नेंडी के बीच नई डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू कर दी है। इसे ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच ट्रेवल और टूरिज्म को बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है।
2: सो नाउ वी कैन गो सो डायरेक्ट फ्लाइट्स
1: गोल्ड कोस्ट
2: फ्रॉम गोल्ड कोस्ट
1: या
2: ओके।
1: Get all your bags together.
2: I think we should go
1: and
2: to Fiji.
1: And then you just take a bus from here, which is 50 cents.
2: Ray,
1: and then you go to the train station, another 50
2: luggage.
1: Cents. Right. And you can go Helensvale somewhere there, then you take another bus from there to the airport.
2: I can tell you something.
1: Carting
2: that luggage is not going to be fun on the bus.
1: No. Just, you know, well, you don't have to take that much, I suppose. Yeah, you're right. मैं सस्ता तरीका बता रहा था
2: बट नहीं, लेकिन लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक टू।
1: नहीं, अगर कोई बैचलर आदमी हो, कोई बच्चा बच्चा नहीं वरी करने
2: को, देन ही कैन जस्ट हैव अ लाइट बैग,
1: लाइक अ
2: बैकपैक ही कैन गो विद।
1: गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी एग्रीकल्चर फिशरीज लॉजिस्टिक्स और डिजिटल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के स्ट्रेटजी पर काम कर रही है ताकि फिजी की इकोनॉमी टूरिज्म पर कम निर्भर हो और ज्यादा डाइवर्सिफाइड बनाए। तो दैट इज वेरी ट्रू है। और चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हुए आज का थॉट बता दूं मैं। जिंदगी में मुश्किल है, ठीक है, हवा की तरह होती है, कुछ देर के लिए आती है लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहती। जो हौसला रखता है वो मंजिल तक पहुंचता है। ठीक है, तो चलो बिना का
2: वाओ
1: शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और आई होप एवरीथिंग इज वर्किंग।
2: मी टू।
1: यस।

और इसे कहते हैं को होस्ट। मैंने कॉफी का चर्चा किया और यहाँ पर कॉफी के चर्चा, इधर गीत। वाह क्या बात है मीता, यू हैवंट फॉरगॉटन मच इन 3 मिनट्स।

0: पर
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: How am I going to say this?
1: Huh?
0: वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है जो इंसान के मन और दिल को शुद्ध और पवित्र बना दे. जो ज्ञान सिर्फ जानकारी बढ़ाने के व्यक्ति के विचार और चरित्र को ना सुधारे वो असली ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान का अभाव है. ओके, तो ज्ञान वो होना चाहिए जो आपको कुछ आप में कुछ परिवर्तन ला सके. मेरे ख्याल से देखिए दोस्तों, जो भोजन के बारे में बात कर रहे थे, अगर सेम अगर अच्छी तरह से आपका जो मसल्स को नहीं मिलेगा न्यूट्रिशन, यू नो व्हाट हैपेंस टू द मसल, एंड आल्सो एज यू एज यू नो यू स्टार्ट लूजिंग मसल.
1: यस,
0: दे स्टार्ट टर्निंग इनटू फैट. या आप जानते हैं जो लोग वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, इफ दे डोंट मेंटेन द हेल्थ एज दे गेट ओल्डर, ऑल द मसल स्टार्ट टर्निंग इनटू फैट. सो थोड़ा थोड़ा करके खाए, अच्छी तरह से खाए, आप देखेंगे आपका वेट मेंटेन रहेगा. दिस गिनी पिग इज टॉकिंग टू यू. आपका वेट नहीं बढ़ेगा अगर आप हिसाब से खाए, सही खाए और नट्स वगैरह भी खाए.
1: कैन आई से समथिंग टू दैट ईटिंग हैबिट्स, एड सम वॉकिंग.
0: ओह या, वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट सेज देयर यू हैव टू वॉक, यू हैव टू वॉक at least they say 30 minutes if you can, you know, at least 30 minutes you have to walk. Walk, ye sab khane se agar aap chalenge nahi waise bhi to acha nahi rahega na. Okay, chaliye jo hame okay. चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. रेडियो बिजबानी आप सुन रहे हैं और इस समय 8:20 हुए हैं. हमारा साथ रहेगा 9 बजे तक, फिर 9 बजे आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ. ओके.

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: Okay. कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी में रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं। अगर मंजिल दूर लग रही है तो याद रखो, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। आज का एक छोटा सा प्रयास कल की बड़ी कामयाबी बन सकता है, तो छोटे छोटे स्टेप्स हम लेते हैं ना दोस्तों। या, रास्ता कभी खत्म नहीं होता है। आई फील लाइक प्लेइंग वन सॉन्ग। It just came to me. Just say something. Talk something. Say
5: well,
3: something.
5: Well, I'm also just thinking of a song.
3: Lekin ye jo gana mein. No, okay.
5: That song is playing in my head. I'm trying to think which movie it's from. It's an Amitabh movie.
3: Yeah. Okay. Chaliye aage ek gana.
5: That you want to play.
3: Yeah.
5: Because
3: yeah,
5: it, yeah. You just thought of it.
3: Yeah.
5: Is it related to what you just said? Probably.
3: Probably. Okay.
5: Oh, okay.
3: Maybe that's why it came, okay?
5: Uche, uche, ras, ter, manzil, ter,
3: okay. This is a song that I thought I'd play.

0: जी हाँ दोस्तों, मूवी सफ़र 1970 मूवी का गीत अभी आपने सुना और मना जैसे आपने सुना कल्याण जी आनंद जी के संगीत पर और इंदिवर ने लिखा था, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और कहते हैं दोस्तों कि हाँ, खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, वक्त ज़रूर बदलेगा, क्योंकि मेहनत और सब्र कभी बेकार नहीं जाता। ठीक है, करते रहिए, कीप गोइंग,
1: कीप गोइंग,
0: जब तक है आप चलते रहिए,
1: जब तक है जान, गिव इट ऑल यू गॉट।
0: सही बात है।
1: नो रियली, आई मीन लाइक यू हैव टू, यू गॉट टू पुट वन फुट इन फ्रंट ऑफ द अदर एंड यू गॉट टू कीप गोइंग, दैट्स इट।
0: दिस द प्रिंसिपल दैट आई लिव बाय, I am not into religious phase anymore, okay?
1: Yes, you're or spiritual.
0: I can't go into religious phase anymore. That is good. I mean, इसलिए तो कहते हैं परिवर्तन ना, from that stage you have to go to some other stages, right? But I just feel, instead of worrying about, I mean, when you come to this age, you think of a lot of things, but I feel, बस आप काम सही रखिए, सही काम करते रहिए, जहां पर आप कुछ किसी को काम आ सके तो आ जाइए, कर दे आप, और चलते रहे, फिक्र मत करे कि और क्या होगा, कब क्या होगा, चलते रहे। और आप अपना ड्रीम्स जो है जीना चाहते हैं तो जिए, ठीक है। एज आई गेट आउट एवरी नाउ एंड देन, यू नो दैट
1: यू हैव टू,
0: एंड आई थिंक आई हैव चेंज्ड अ लॉट बाय डूइंग, आई हैव बीन टोल्ड दैट आई हैव चेंज्ड अ बिट। सो लाइफ यही है दोस्तों, जर्नी है, और आई थिंक अटैचमेंट एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये तो हमारे संत गुरु सब कहते आए हैं, एंड आई थिंक बात भी सही है।
1: यू मस्ट रिमेंबर एवरीवन्स ऑन देयर ओन जर्नी,
0: यू आर ऑन योर ओन जर्नी,
1: या
0: एंड मोर सो एज यू गेट ओल्डर यू फाइंड दैट यू आर मोर ऑन योर ओन जर्नी। अगर पाबंदी लगा ले आप बहुत अपने ऊपर, तो ये आपका जो आप जीना चाहते हैं शायद जी नहीं पाएंगे। तो पाबंदी का मतलब है इमोशनल अटैचमेंट एंड मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट, ये सब थोड़ा आपको रोकेगा पीछे। तो आई डोंट नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम ट्राइंग टू से लिव योर ड्रीम्स, ओके,
1: लिव योर लाइफ,
0: लिव योर लाइफ। अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, you done the right job to bring them up, self-sufficient hai, chal rahe apna, theek hai, aur you can still live your life, chahe aap married ho, kuch log hai jo ek dusre ke bina kuch nahi kar pate hain,
1: I
0: always talk about yourself and independence a little bit, okay, because you are two different people, and काल क्या होता है, लोग जब बहुत ज्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, अगर एक पार्टनर चला गया तो इट बिकम्स वेरी हार्ड ऑन द अदर,
1: यू फॉल अपार्ट, यस,
0: सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, आई मीन दिस इज
1: लाइफ, दैट इज रियलिटी,
0: यू डोंट गोना बी टुगेदर फॉर
1: नो, एज मच एज यू वुड लाइक टू, बट द थिंग इज लाइफ हैज डिफरेंट थिंग्स फॉर ईच वन ऑफ अस,
0: इट इज डिफरेंट ऑब्वियसली,
1: राइट। सो
0: कहते हैं कि सूरज हर शाम ढलता है लेकिन अगली सुबह फिर नई रोशनी के साथ निकलता है, इसी तरह मुश्किलें भी हमेशा के लिए नहीं रहती। तो लाइफ में बहुत कुछ है दोस्तों, कभी सुख तो कभी गम, समटाइम इज रेन, समटाइम इज शाइन्स,
1: लाइक राइट नाउ द सन इज शाइनिंग,
0: या सो
1: okay, can I play my song?
0: Okay, play it.
1: Because it came in my head.
0: Another song came to my mind.
1: I'm playing this first. Okay. I'm playing this, and then you can find your song.

0: एक और प्यारा सा गीत अभी आपने सुना. थैंक यू मीता फॉर दैट लवली सॉन्ग. We have to keep on trucking. Okay?
1: Yes.
0: Keep on trucking. और चलो अब जाते हैं, समय हो गया है. और अगला जो गीत है दोस्तों, उन लोगों के लिए चुना गया है जो शायद आज कुछ दुख तकलीफ में हो. You may have lost your loved one. हमेशा हंसी खुशी से गाना इस प्रोग्राम का करते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ मीनिंग है. आपको हम सोच रहे हैं. If you are okay in that phase of life at the moment.
1: Yep.
0: तो चलिए इस गीत के साथ हम निकलेंगे.
1: We'll say our namaste.
0: Yep. और आप सभी ने साथ दिया.
1: Beautiful day. We'll see you tomorrow.
0: See you.

मॉर्निंग ब्रिस्बेन, रेडियो ब्रिस्बानी 1701 एम पर एक नई सुबह, एक नए आगाज और कुछ बेहतरीन मॉर्निंग ट्रैक्स के साथ आपकी सताक्षी हाजिर है आपके लिए लेकर सुबह का ताजा तरीन और बेहतरीन वाला शो। जी हाँ, इट हैपेंस, जिसमें आज फिर से हम कुछ ऐसे मॉर्निंग ट्रैक्स सुनने वाले हैं जो हमें रिफ्रेश कर देंगे, हमारी मॉर्निंग को रिफ्रेश कर देंगे और हमारी ऐसी बातें जो इस वक्त को, इस पल को हमारे लिए खास बना देंगी। सो चलिए, देर किस बात की है, आगाज करते हैं आज के सफर का। जी हाँ, आज बहुत कुछ कहना है आपसे एक बार फिर से, क्योंकि हमें पता है कि सुबह का आगाज वो है जो आपके पूरे दिन के लिए बहुत ही खास और स्पेशल होता है। वो हर एक प्लानिंग, वो हर एक बात, वो हर एक किस्सा आपके जहन में कहीं ठहर जाता है और इसीलिए ये स्पेशल पल आपके लिए भी हम स्पेशल जरूर बनाएंगे। एक अगला ट्रैक एंजॉय कीजिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एफएम पर।

वेलकम बैक इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिज फानी पर सताक्षी के साथ। जी हाँ, इट हैपेंस में आज बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां और हमारे गाने भी हैं जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, बांटे जाएंगे, आपको सुनवाए जाएंगे यहाँ पर। लेकिन उन्हें विश कर दिया जाए जिनके लिए ये पल स्पेशल है। सो बर्थडे बेबीज, जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और विश करते हैं हम कि ये दिन, आज का दिन जो है, वो आपके लिए ढेर सारी ऐसी खुशियां लेकर आए जिनकी ताजगी पूरे साल बरकरार रहे। आपके अगले बर्थडे तक जो है ये खुशियां आपको सराबोर करती रहे, आपको हंसाती रहे और आप में डूबे रहे। जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है उन सबको शादी की सालगिरह की ढेरों शुभकामनाएं। और बस यूं ही जिंदगी के सफर पे एक दूसरे के साथ चलते रहिए, एक दूसरे का हाथ थामे हुए जिम्मेदारियों को निभाते रहिए, अपने सपनों को जीते रहिए और अपनी मोहब्बत को और भी बढ़ाते रहिए। इसके साथ उन्हें भी विश कर दिए जाए जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है, यानी आज कुछ लाइफ में बढ़िया होने वाला है। इंटरव्यू हो सकता है, किसी को प्रपोज करना हो सकता है, दोस्तों के साथ बहुत दिनों बाद मिलना हो सकता है। जो भी आपके लिए आज बहुत ही खास मोमेंट है, उसके लिए आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। जी हाँ, और आप सबको डेडिकेट करते हैं ये अगला ट्रैक, इसे सुनिए। आपके साथ है सताक्षी।

इट हैपेंस में सताक्षी के साथ एक बार फिर से आप हैं दोस्तों रेडियो प्रिस्वानी 1701। कहते हैं कि इस दुनिया में इंसान वही चीज सबसे ज्यादा देता है जो चीज या जिस चीज की कमी उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फेस की है। आपकी जिंदगी में आपको प्यार करने वाले जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा बेशुमार जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो वही लोग होंगे जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी में प्यार की कमी महसूस की है। जी हाँ, क्योंकि जिसके पास जिस चीज की कमी होती है ना उसको उसकी वैल्यू पता होती है, लेकिन जिसको शुरू से बहुत मोहब्बत मिली है, बहुत पैम्पर रहा है, बहुत ज्यादा लोगों ने उसकी डिमांड्स पूरी की है, उसके आगे पीछे लोग रहे हैं, लोगों ने उससे मोहब्बत बहुत ज्यादा की है, उसे ये पता ही नहीं है कि एक्चुअली प्यार होता क्या है, है ना, वो उसका रोज का रूटीन है। बट जिसकी जिंदगी में लैक ऑफ लव रहा है, जिसकी जिंदगी में प्यार की कमी मोहब्बत की कमी रही है, जिसने दूसरों को मोहब्बत करते देखा पाते देखा लेकिन अपनी जिंदगी में रियलाइज किया कि उसकी जिंदगी में वो कमी है, तो यस यार वो ना बंदा फिर चाहता है कि दूसरे को वो चीज पूरी करे, है ना। और इसीलिए मैंने देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जितना उन्हें मिलता है ना अपनी लाइफ में उससे कहीं ज्यादा बढ़कर देते हैं, चाहे प्यार हो या फिर चीजें हो, एजुकेशन हो, परवरिश हो, सब बढ़कर देते हैं, है ना। हाँ, तो चलिए इसी बात पर एक ट्रैक सुनते हैं उनके नाम, जो मोहब्बत तो बेशुमार करते हैं लेकिन खुद अपनी जिंदगी में कहीं कुछ कमी है। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी आपके साथ है सताक्षी।

साक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रस्वानी पर आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस को। यू नो आपने कभी समुंदर को देखा है? ऑफ कोर्स देखा होगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो निकले ही होंगे टूर पे, है ना। समुंदर की गहराई को कभी आप देख पाए हैं? नहीं ना। इसी तरह से कभी किसी बहुत खूबसूरत बड़े से पेड़ की तस्वीर ली है? अगर नहीं ली है तो लेकर भी देखिएगा। क्या आप उसकी जड़ें देख सकते हैं, उसके रूट्स को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं। यू नो जो चीज जितनी बड़ी होती है ना या जितनी खूबसूरत होती है, उसके वहां तक पहुंचने का जो जरिया है वो किन किन चीजों से, किन किन रास्तों से, किन किन कठिनाइयों से होकर बनी है या गुजरी है, उसे हम नहीं देख पाते हैं। आप बहुत हेल्पफुल हैं, आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, आप अपनों के लिए बहुत करते हैं, जिम्मेदारियां बहुत निभाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कितना अंदर से कितनी बार टूटे हैं। हो सकता है कि आपने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए कई बार खुद को समेटा हो, जोड़ा हो, एक हिम्मत खुद को दी हो कि यार नहीं, आपको हारना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी आपको पूरी करनी है। तो है ना आप ग्रेट। हाँ, क्योंकि लोगों को वो नजर नहीं आता, उन्हें सिर्फ ये नजर आता है कि आप कितना बढ़िया काम कर रहे हैं सबके लिए। आइए एक और ट्रैक इसी बात पे सुनिए फिलहाल मेरे साथ, और यूं ही एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन जी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: It happens to be a song with Sori Jupraswani 1701 amper. And it happens to be a song with Gaano ki hat-trick. So, let's see, Gaano ki hat-trick ka aaj ka pehla track kaun sa hai.

गानों की हैट्रिक में तीन बैक टू बैक ट्रैक्स आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ, और ये रहा गानों की हैट्रिक का अगला ट्रैक। के प्लस टू रेडियो प्रस्वानी, मेरे साथ यूं ही एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM पर। और देखिए आप ये तो जानते हैं कि मैं आपकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, है ना। हर सुबह आपकी जिंदगी में कुछ अच्छी खुशियां, कुछ पॉजिटिव वाइब्स भरने के लिए मैं रोज आपसे मिलती हूँ। तो आज उसी दोस्ती के नाते कुछ कहूँ तो आप मना तो नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, है ना। तो बस ये कहना है कि भाई सुबह उठने के साथ ही जब आप बिस्तर से उठते हैं और जैसे ही आप उठते हैं वहीं बैठ कर आप जिस भी ईश्वर में मानते हैं, जिस भी ऊपर वाली शक्ति में मानते हैं, उसे बस थैंक यू कह दीजिए। जी हाँ, शुक्राना करना जो है वो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। और सुबह उठने के साथ ही, अभी आपका दिन जब शुरू भी नहीं हुआ होता ठीक से, उस वक्त अगर आप थैंक यू कहेंगे तो मैं आपसे गारंटी से कह रही हूँ कि दिन खत्म होते होते वो थैंक यू कहने की वजह जो है वो आपको दोबारा मिल जाएगी। जी हाँ, विश्वास ना हो तो ट्राई करके देखिए। सुबह उठने के साथ सबसे पहले जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसे कहिए थैंक यू। चलिए फिलहाल एंजॉय कीजिए मेरे साथ ये अगला ट्रैक और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ आपकी मॉर्निंग का साथ और कुछ खूबसूरत गाने।

एक और ट्रैक के इस बार सताक्षी आपके साथ है, रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस। सो भाई कहते हैं, ऐसे मैंने सुना है कि आप किसके हैं ये अच्छा वक्त बताता है। अच्छे वक्त में आप सब उन लोगों को याद करते हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत कीमती हैं। आप पार्टी करेंगे तो अपने सारे नियर एंड डियर वंस को बुलाएंगे, अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे, है ना, अपने अपनों को बुलाएंगे, लेकिन आपका बुरा वक्त क्या बताता है? आपका बुरा वक्त बताता है कि कौन आपका अपना है। अक्सर जो लोग आपके साथ पार्टी करते हैं ना आपके अच्छे वाले वक्त में, वो आपके बुरे वक्त में नजर तक नहीं आते हैं। और बुरे वक्त में नजर कौन आता है? वो इंसान जो शायद हो सकता है कि आपकी पार्टी का हिस्सा ना रहा हो, लेकिन जिसके लिए आप बहुत बेशकीमती हैं। तो चलिए उसी कीमती इंसान के नाम एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ, एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्बेन। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।